0: कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है।
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
0: फिर रफ्ता रफ्ता उसकी हालत को बदल कर पस्त से पस्त कर दिया।
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बे इंतहा अज्र है।
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ
0: तो ऐ आदमजाद फिर तू जजा के दिन को क्यों झुटलाता है।
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
0: क्या खुदा सबसे बड़ा हाकिम नहीं है।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: اقرأ بسم ربك الذي خلق
0: ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने आलम को पैदा किया।
1: خلق الإنسان من علق
0: जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया।
1: اقرأ وربك الأكرم
0: पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है।
1: الذي علم بالقلم
0: जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया।
1: علم الإنسان ما لم يعلم
0: और इंसान को वो बातें सिखाई जिसका उसको इल्म न था।
1: كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى
0: मगर इंसान सरकश हो जाता है।
1: أَوْ رَآهُ اسْتَغْنَى
0: जबकि अपने तई गनी देखता है।
1: إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى
0: कुछ शक नहीं कि उसको तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ लौट कर जाना है।
1: أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى
0: भला तुमने उस शख्स को देखा जो मना करता है।
1: عَبْدًا إِذَا صَلَّى
0: यानी एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ने लगता है।
1: أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى
0: भला देखो तो अगर ये राह रास्त पर हो।
1: أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى
0: या परहेजगारी का हुक्म करे तो मना करना कैसा।
1: أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى
0: और देख तो अगर उसने दीन हक को झुटलाया और उससे मुंह मोड़ा तो क्या हुआ।
1: أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى
0: क्या उसको मालूम नहीं कि खुदा देख रहा है।
1: كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
0: देखो अगर वो बाज ना आएगा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे।
1: नासियतिन काजिबतिन खातिअ
0: यानी उस झूठे खताकार की पेशानी के बाल।
1: फलयदउ नादिया
0: तो वो अपने यारों की मजलिस को बुला ले।
1: सनदउ ज़बानिया
0: हम भी अपने मौक्किलाने दोज़ख को बुलाएंगे।
1: कल्ला ला तुतिउहु वस्जुद वक्तरिब
0: देखो उसका कहा ना मानना और सजदा करना और कुर्बे खुदा हासिल करते रहना।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र
0: हमने इस कुरान को शबे कद्र में नाजिल करना शुरू किया।
1: वमा अदराका मा लैलतुल कद्र
0: और तुम्हें क्या मालूम कि शबे कद्र क्या है।
1: लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर
0: शबे कद्र हजार महीने से बेहतर है।
1: तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम कुल्ली अम्र
0: इसमें रूहुल अमीन और फरिश्ते हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं।
1: सलामुन हिया हत्ता मतलाउल फज्र
0: ये रात तुलुए सुबह तक अमान और सलामती है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
0: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔
1: رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا،
0: یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں،
1: فیہا کتب قیما،
0: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں،
1: وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ،
0: اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں،
1: وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء،

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

0: मेहनत तो करनी है, लेकिन वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि मेरी मेहनत ऐसी हो कि मैं क्लास के टॉप 10 बच्चों में रहूं, ना कि मैं 90 नंबर लूं।
1: बिल्कुल,
0: अगर वो टॉप 10 में होगा या टॉप 5 में होगा तो फिर उसका ए ग्रेड गारंटीड होगा, 90 नंबर लेना उसका ए ग्रेड गारंटी नहीं करेगा रिलेटिव जीपीए के अंदर।
1: बिल्कुल सर, क्या रिलेटिव ग्रेडिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन को प्रमोट करती है या फिर स्टूडेंट में अननेसेसरी प्रेशर और स्ट्रेस पैदा करती है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
0: रिलेटिव ग्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट तो हेल्दी कंपटीशन को इन्हांस करना है, लेकिन जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि इसको स्ट्रेस लेके, काफी स्ट्रेस एनवायरनमेंट में लेके जो ना उसको आगे बढ़ते हैं, और इसमें होता क्या है कि फिर वो अपने शेयरिंग, जो क्लास फेलोज के अंदर आपने पढ़ाई के दौरान शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो वो उसको भी अवॉइड करते हैं, जिससे एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ आप जाना शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर आप रिलेटिव जीपीए को कोलैबोरेशन के साथ करके चलें तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
1: बिल्कुल, और सर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अननेसेसरी प्रेशर की वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब भी हो जाती है स्टूडेंट की।
0: जी, इसमें फिर वो मेंटल स्ट्रेंथ का फैक्टर आ जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स मेंटली स्ट्रांग होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते वो फिर इसको अपने ऊपर इतना ज्यादा सवार कर लेते हैं कि बजाय इसके कि परफॉर्मेंस उनकी बेहतर हो, वो डिग्रेड हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में अगर सिलेबस या एग्जाम बहुत टफ हो तो क्या ये सिस्टम स्टूडेंट के साथ इंसाफ कर पाता है? इस हवाले से आपका तजुर्बा क्या कहता है?
0: जी, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के अंदर अगर सिलेबस टफ है तो फिर उसमें स्टूडेंट के साथ इंसाफ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप इसको रिलेटिव के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सिलेबस आप चाहे डिफिकल्ट बनाएं, पेपर आप चाहे हार्ड बनाएं या इजी बनाएं, पूरी क्लास के लिए एक सेम क्राइटेरिया है
1: जी।
0: तो उसमें फिर रिलेटिव जो है ना वो ज्यादा नंबर ले जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट में तो बच्चे ने 90 नंबर की दौड़ में जाना है अगर उसको ए ग्रेड चाहिए, और अगर पेपर टफ है तो वो फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ जाता है एब्सोल्यूट के ऊपर कि मुझे तो 90 नंबर लेने ही लेने, और वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है।
1: सर वैसे तो भी आपने इस बारे में जिक्र किया भी कि बच्चा जो सा है वो शेयरिंग को अवॉइड करता है, लेकिन सर रिलेटिव ग्रेडिंग का स्टूडेंट की सेल्फ कॉन्फिडेंस और टीम वर्क पे क्या असर होता है, खासतौर पर जब क्लास में हाई अचीवर ज्यादा हों?
0: हाँ, इसमें देखें, इसके लिए टैक्टिकली अगर वो बच्चा चले, मेंटली स्ट्रांग अगर वो बच्चा है तो वो क्या करेगा कि वो जो क्लास में जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो उनके साथ अपने ग्रुप्स बनाएगा ताकि उसकी भी अपग्रेडेशन हो, उसकी भी लर्निंग का स्केल और लर्निंग की प्रोडक्टिविटी उसी हिसाब से बढ़े। बाकी अगर कोई मेंटली वीक स्टूडेंट होगा तो फिर वो उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, वो छुपता रहेगा, वो खामोश रहेगा, और वो फिर उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी,
1: यानी उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो से हैं वो मजीद कम हो जाएंगे।
0: उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस मजीद कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो बजाय इसके कि वो कोलैबोरेट करे, हाई अचीवर्स के साथ मिक्सअप हो और अपनी स्टडीज को इन्हांस करे, वो छुप छुप के अकेले काम करने के चक्कर में अपनी काबिलियत को उस हिसाब से उभार के बाहर नहीं ला पाता।
1: बिल्कुल, लिसनर्स वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ग्रेडिंग सिस्टम में एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि रिलेटिव जो है वो ज़्यादा बेहतर है, कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल है कि जो एब्सोल्यूट है उसमें ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सर साजिद सलीम साहब, जो हमें इस हवाले से बड़ी तफसील से आगाह कर रहे थे। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सर, अभी आपने हमें बताया कि एब्सोल्यूट में किस तरह स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है और रिलेटिव में क्लास का एनवायरनमेंट किस तरह चेंज हो जाता है और कौन सी ग्रेडिंग सिस्टम में स्टूडेंट पे प्रेशर ज़्यादा महसूस होता है और कहाँ पे टीम वर्क जोन सा है वो ज़्यादा बेहतर बनता है। सर, आगे अपने सवालात को आगे बढ़ाते हैं। सर, आप ये बताइएगा कि क्या एब्सोल्यूट ग्रेडिंग लर्निंग आउटकम्स और स्किल डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करती है या फिर सिर्फ मार्क्स तक महदूद रहती है?
2: अच्छा, इस डिबेट में अगर हम पढ़ें तो चाहे वो एब्सोल्यूट जीपीए हो चाहे वो रिलेटिव जीपीए हो, अगर हम एक स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दोनों के अंदर स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम जो है वो एक ही तरीके से अचीव होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अचीव करने के लिए स्टूडेंट की अपनी मेहनत जो है ना वो बहुत असर करती है। बट स्टिल रिसर्चर्स डू आर्ग्यू कि जो रिलेटिव जीपीए सिस्टम है वो स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम को ज्यादा बेहतर तरीके से उभारता है, क्योंकि बच्चे को मार्क्स की दौड़ में नहीं लगा हुआ, बच्चे को अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए और टॉप 5% में आने के लिए वो अपनी लर्निंग को ज्यादा इन्हांस करेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी टिल्टिंग जो है वो आपकी रिलेटिव जीपीए की तरफ आ जाती है कि रिलेटिव जीपीए जो है वो लर्निंग आउटकम को ज्यादा प्रमोट करता है।
1: सर, अगर हम टीचर्स के हवाले से बात करें तो कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम ज्यादा मैनेजेबल और ट्रांसपेरेंट होता है और क्यों?
2: अगर हम ट्रांसपेरेंट ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम तो ट्रांसपेरेंट है
1: जी।
2: रिलेटिव जीपीए सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी तो है बट कंफ्यूजन भी है
1: जी।
2: अगर आपकी क्लास में सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे आए हुए हैं और आपकी क्लास की एवरेज लेट सपोज 80+ चली गई है
1: जी,
2: तो इसका मतलब है कि जो बच्चा 80% लेके आ रहा है वो है लेट सपोज बी ग्रेड के ऊपर है
1: जी,
2: और ए ग्रेड वाला 90+ पे चला गया।
1: बिल्कुल।
2: वाइस वर्सा, अगर आपकी क्लास के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई अचीवर्स हैं और 90% पे आपकी क्लास एवरेज चली गई है, जैसे कि आपके पास मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आमतौर पे क्लास एवरेज हाई होती है, क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने सॉल्व कर लिया यू गेट मैक्सिमम मार्क्स, तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्या होती है? लेट सपोज हाइपोथेटिकल सिनेरियो में कि 96% के ऊपर बच्चे का ए है और 93% के ऊपर बच्चे का बी है, बी प्लस है
1: जी।
2: तो अब बच्चा परेशान है कि मैं 93% लेके भी बी प्लस लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर उसका जो कन्फ्यूजन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप कहें कि जी अच्छा जी, अगर क्लास के अंदर तमाम बच्चे अच्छे नहीं है, लेट सपोज एक एवरेज क्लास है और आपकी क्लास एवरेज 60s पे चली जाती है, तो यहाँ पर 70% लेने वाला बच्चा भी ए लेके आ सकता है, तो यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन और बढ़ जाती है कि 70 वाला भी ए है और 93 वाला बी प्लस है।
1: एट द एंड दोनों कंसीडर ए ही होंगे
2: जी,
1: हालांकि वो 70 में आ रहा है।
2: 70 वाला भी ए कंसीडर होगा और 96 वाला भी ए कंसीडर होगा, तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसको लेके स्टूडेंट्स को दरमियान भी रहती है और टीचर्स के दरमियान भी रहती है।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, रिलेटिव ग्रेडिंग में अगर पूरी क्लास अच्छा परफॉर्म करे तो क्या सब स्टूडेंट्स को फेयर रिवॉर्ड मिलता है या फिर कंपैरिजन फिर भी नुकसान देता है?
2: हाँ, जैसे कि अभी हमने एक सिनेरियो के देखा जिसमें 90% क्लास एवरेज थी, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी पूरी क्लास, लेकिन फिर फेयर रिवॉर्ड नहीं मिल सकता रिलेटिव के अंदर, क्योंकि रिलेटिव की फेयर का मतलब ही यही है कि टॉप 5% को एक ग्रेड मिलेगा, नेक्स्ट 5% को सेकंड ग्रेड मिलेगा एंड सो ऑन। तो अगर आपका फेयरनेस का मतलब ये है कि जी अगर सारे अच्छे बच्चे हैं तो सबको आप ए ग्रेड दे दें, तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच।
1: बिल्कुल।
2: अगर सारे अच्छे बच्चे हैं तो उनमें भी कुछ आउट परफॉर्मर्स होंगे, कुछ एक्सेप्शनल होंगे, तो उन एक्सेप्शनल को आप कैसे अच्छों से अलग करेंगे कि ये अच्छा बच्चा है और ये एक्सेप्शनल बच्चा है, उसके लिए फिर रिलेटिव जीपीए जो है ना वो ज्यादा बेटर है।
1: बिल्कुल। सर, ग्रेडिंग सिस्टम का स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ मोटिवेशन और एग्जाम एंजाइटी पर क्या असर होता है या क्या रोल है उसका, और कौन सा सिस्टम ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच देता है?
2: द ग्रेडिंग सिस्टम का अगर हम लेट्स सपोज वी स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि बहुत पुराना ग्रेडिंग सिस्टम है, चलता आ रहा है, तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम भी स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे स्ट्रेस देता था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे 80 नंबर चाहिए तो मुझे ए ग्रेड मिलेगा, या मुझे 90 चाहिए तो मैं ए ग्रेड के अंदर आऊंगा, तो स्ट्रेसफुल तो वो भी होता था। रिलेटिव ने क्या किया है कि उस स्ट्रेस को नंबर से हटा के परसेंटेज के ऊपर ले गया है, विच मींस कि अगर उसे अगर आपके क्लास फेलोज हैं तो आपको पता है कि आपकी क्लास के अंदर अच्छे बच्चे कितने हैं और नॉर्मल एवरेज बच्चे कितने हैं, तो यू ऑलवेज ट्राई टू स्टे ऑन दी टॉप, आपको हमेशा अपने टोज पे रहना पड़ता है, और आप जो है वो पूरा सेमेस्टर काम करते हो, ना कि आप कहते हो अगर एक असाइनमेंट रहेगी मेरी कोई मसला नहीं, मैं अगली में पूरे लेके एक सर्टन अमाउंट ऑफ बाउंड्री को क्रॉस कर लूंगा, लेकिन रिलेटिव में आपको ये पता है कि मुझे हर असाइनमेंट और हर क्विज में अच्छा परफॉर्म करना है, टॉप 5% में परफॉर्म करना है, ताकि मैं जो हूँ वो ए ग्रेड के अंदर आ सकूँ, टॉप 5% में आ सकूँ। मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर बच्चा मेंटली स्ट्रांग है तो वो इस तमाम सिस्टम को न सिर्फ कोप अप कर सकता है बल्कि इसको एंजॉय भी कर सकता है। लेकिन अगर बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो उसको अपने ऊपर स्ट्रेस की फॉर्म में ला सकता है या गिव अप भी कर सकता है। अक्सर सिनारियोज में बच्चा गिव अप कर देता है कि यार ठीक है मैं बस डी ग्रेड लेके पास हो जाऊंगा, तो वो उस दौड़ से अपने आप को माइनस कर लेता है। हमारे पास ऐसे भी सिनारियोज एग्जांपल्स गुजरी हैं जहां पे क्लास के अंदर इतने अच्छे मेंटली स्ट्रांग स्टूडेंट्स रहे हैं कि वो पूरी क्लास को गाइड करके चलते थे, और उसका नुकसान थोड़ा सा टीचर्स को हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से यूनिटी क्लास में क्रिएट कर लेते थे, और यूनिटी क्रिएट करके दे डिसाइड कि ये एक चैप्टर जो है वो उसके ऊपर हमने फोकस ज्यादा करना है और इसे एक चैप्टर के ऊपर हमने फोकस कम करना है
1: जी।
2: तो उससे अगर आपके पास पेपर में वो सवाल आ गया जिस चैप्टर के ऊपर उन्होंने फोकस कम किया हुआ, तो फिर पूरी की पूरी क्लास के ही नंबर जो है वो खराब आते थे। और इसी तरह बच्चों के स्मार्टनेस कह लें, या मैं तो शरारत की कैटेगरी में इसको डालूंगा, कि रिलेटिव जीपीए के अंदर बच्चों की शरारत भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि बच्चे को पता है कि मुझे टॉप 5% में रहना है
1: जी,
2: तो वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के जरिए बकिया बच्चों को मिसगाइड करता है, ताकि उनकी परसेंटेजेस कम हो जाए और उसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाए। उनसे असाइनमेंट्स की डेडलाइन मिस करवा देता है, उनसे क्विजेस की डेडलाइन मिस करवा देता है, क्योंकि अगर उसकी क्विज की डेडलाइन मिस हो जाएगी तो एज अ पेनल्टी उसके नंबर कुछ कट जाएंगे, और जो शरारती बच्चा है उसको नंबर मिल जाएंगे, इस तरह वो अपनी पूरी क्लास से ऊपर टॉप 5 या टॉप 10% में रहने की कोशिश करता रहता है।
1: बिल्कुल। लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो आजकल हमारे ग्रेडिंग का निज़ाम पाया जाता है, जिसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट GPA दोनों ही चल रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि क्या फ़र्क है दोनों में, किस में स्टूडेंट पे ज़्यादा प्रेशर होता है, किस में स्टूडेंट ज़्यादा सीखता है, किस में स्टूडेंट टीम वर्क में काम करना ज़्यादा पसंद करता है, किस में ज़्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करता है। हमारे साथ इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सर साजिद सलीम साहब। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ या जॉब मार्केट की बात करें तो कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करता है, रिलेटिव या एब्सोल्यूट?
2: जॉब मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अब जो है ना, जॉब मार्केट रिलेटिव को ज्यादा प्रेफर कर रही है। वजह ये है कि जब आपके पास एब्सोल्यूट के कॉन्टेक्स्ट में बच्चा सिर्फ मार्क्स ही लेने के पीछे दौड़ना है तो उसकी नॉलेज वाइज उतना इंक्रीमेंट नहीं होता नॉलेज में, और जब वो इंटरव्यूज में जाता है तो वहाँ पे इंटरव्यूअर्स के जो क्वेश्चंस है वो उनको आंसर नहीं कर पाता। मेरे पास एक कलीग थे, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर हाउस में इंटरव्यू के लिए जब स्टूडेंट्स को बुलाया तो मेरी इस टॉपिक के ऊपर उनसे बात हुई थी, तो इनिशियली उन्होंने 3.75 एंड अबव GPA वाले स्टूडेंट्स को बुलाया
1: जी।
2: दो पोस्ट अवेलेबल थी उनके पास, तो कोई भी बच्चा उनके जो है ना इंटरव्यू पास नहीं कर सका। उन्होंने कहा अच्छा चले, अब हम 3.5 से 3.75 वाले जो हैं बच्चे उनको बुला लेते हैं
1: जी।
2: उनको भी बुलाया, बच्चा क्लियर नहीं कर सका। फिर उन्होंने 3 और 3.5 के बीच में से जब बुलाया, वहां से कुछ बच्चे उनके इंटरव्यू को क्लियर कर सके, जिससे इस बात को फर्दर जो है ना वो क्लैरिटी मिलती है कि ग्रेड्स, एब्सोल्यूट ग्रेड्स डू नॉट सिग्निफाई कि आपने लर्न क्या किया है।
1: क्योंकि
2: उनको जो चीज चाहिए थी कि बच्चा कितना काबिल है, वो 3 और 3.5 के बीच वाले बच्चे ने उनको पूरा करके दिया। तो इसलिए जो है ना वो मार्केट के अंदर भी रिलेटिव GPA को ज्यादा प्रेफर किया जाता है।
1: अच्छा सर, अगर कोई हाइब्रिड ग्रेडिंग सिस्टम आ जाए जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करे, तो ये सर स्टूडेंट के लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है?
2: जी, मेरे ख्याल में हाइब्रिड सिस्टम डिपेंड करता है कि आप हाइब्रिड क्या चीज ऐड करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हर सिस्टम के अंदर कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, थोड़े बहुत लूप होल्स होते हैं, तो आप उन लूप होल्स को प्लग करने के लिए आप एक एब्सोल्यूट की कुछ चीजें रिलेटिव के साथ मिला दें। फॉर एग्जांपल, आप एक पासिंग क्राइटेरिया का एक मिनिमम नंबर रख दें कि जी मिनिमम इतना नंबर अगर बच्चे ने लिए हैं तो फिर वो पास होकर रिलेटिव GPA के अंदर एप्लीकेबल है, वरना वो फेल हो जाएगा। तो ये इस तरह की कुछ छोटी मोटी और इंक्लूजन है, जैसे कि पहले इतनी स्ट्रिक्टनेस भी होती थी एब्सोल्यूट के अंदर कि आपको हर असेसमेंट में इंडिविजुअली पास होना पड़ता था।
1: बिल्कुल,
2: जैसे मिड में अलग पास होना है, फाइनल में अलग पास होना है।
1: बिल्कुल,
2: अब रिलेटिव GPA के कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं फॉलो अप होता। इसमें ओवरऑल आपका 100% में से जितना परसेंटेज आ गया वो अगर पासिंग क्राइटेरिया के अंदर लाई कर गया तो आप पास हो गए
1: जी।
2: तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द एब्सोल्यूट GPA जिसको मेरे हिसाब से रिलेटिव GPA के अंदर इनकॉर्पोरेट होके एक हाइब्रिड सिस्टम बनाना चाहिए। एक दूसरा, रिलेटिव GPA सिस्टम के भी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ना HEC ने कोई स्टैंडर्डाइजेशन दी है, ना रिसर्चर्स ने कोई स्टैंडर्डाइजेशन दी है, जिसकी वजह से रिलेटिव GPA सिस्टम भी वैरी करता है फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूट जो रिलेटिव GPA सिस्टम को स्टैंडर्ड डिविएशन और एब्सोल्यूट GPA के स्टैंडर्ड डिविएशन और एवरेज, क्लास एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से उसके ऊपर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करके बकायदा ग्रेड्स डिफाइन कर देते हैं, और फिर उन डिफाइन ग्रेड्स को टीचर चाहे तो अप टू 1-2% उनको वो हिला के अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप कैटेगरी के अंदर लाया करके दे सकता है। उसमें क्या होता है कि ये एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ रिलेटिव GPA है जिसमें यू हैव द फ्रीडम बट विद इन अ लिमिटेड स्पेस। लेकिन अगर आपको कोई मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला हुआ, फिर तो यू डोंट हैव एनी बाउंड्री एट ऑल। और फिर अगर दो टीचर हैं तो दो टीचर अलग अलग तरीके से अपनी अपनी क्लास में बाउंड्री सेटअप कर सकते हैं, देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया फॉर दैट। तो आई एम ऑलवेज इन द फेवर के रिलेटिव के अंदर आप एब्सोल्यूट के कुछ एलिमेंट्स को मिलाएं और एक हाइब्रिड फॉर्म लेके आए ताकि रिलेटिव के जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, वो इम्प्रूव हो सके।
1: अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आपके ख्याल में कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो ज्यादा सूटेबल है और क्यों?
2: देखिए, पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है उसको लगता है कि रिलेटिव GPA सिस्टम ठीक नहीं है। वजह यह है कि पूरी स्कूलिंग में उसने एब्सोल्यूट जीपीए पढ़ी होती है
1: जी।
2: पूरे कॉलेज में उसने एब्सोल्यूट जीपीए पढ़ी होती है और जब वो यूनिवर्सिटी में आता है तो पहली दफा उसको रिलेटिव का सामना करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
2: एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा पूरे स्कूल पूरे कॉलेज में साल में एक दफा उसका एग्जाम होना है जिसकी बेस के ऊपर उसकी सारी असेसमेंट होनी है
1: जी।
2: जब वो यूनिवर्सिटी में आता है तो सेमेस्टर सिस्टम मिल जाता है उसको, तो उसको दो नई चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है। अब उन दो नई चीजों में से जब वो अपने लेफ्ट राइट पे देखता है तो कुछ इंस्टीट्यूट एब्सोल्यूट जीपीए के ऊपर चल रही होती है और कुछ रिलेटिव के ऊपर चल रही होती है, तो वो क्योंकि एब्सोल्यूट उसके दिमाग में फीडेड है जो पिछले 12 सालों से कंफर्टेबल है, तो कहता है यार एब्सोल्यूट ठीक है, रिलेटिव तो समझ नहीं आ रहा मुझे। वो समझना चाहता भी नहीं है क्योंकि 12 साल से वो एब्सोल्यूट के ऊपर चलता आ रहा,
1: उसको वो एक बर्डन फील हो रहा है,
2: उसको वो बर्डन फील होता है। तो पाकिस्तानी सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में हमें अगर रिलेटिव के अंदर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आ गए हैं, लेकिन हमें इसको पूरा कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल, चाहे बेशक स्कूल की सेकेंडरी लेवल तक ही ले जाएं, लेकिन ले जाना पड़ेगा ताकि बच्चा जब यूनिवर्सिटी में आए तो उसको ये परेशानी ना हो कि यार ये मैं कौन से ग्रेडिंग सिस्टम में आ गया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है।
1: उसको नो हाउ पहले से ही हो जाए उसके बाद,
2: उसको नो हाउ हो ताकि वो कम्फर्ट जोन में आ जाए ना।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, पेरेंट्स ग्रेडिंग सिस्टम को कैसे समझें, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो अभी तक स्टूडेंट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं, तो पेरेंट्स को भी अवेयर होना इनके इसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो स्टूडेंट अपने घर को घर वालों को बता ही नहीं पाता कि मेरे साथ हुआ क्या है, मैं 92 लेके भी क्यों ए नहीं ले पाया। तो सर पेरेंट्स को इसके बारे में किस तरह ग्रेडिंग सिस्टम को किस तरह समझना चाहिए और वो अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को किस नजरिए से एवेल्युएट करें?
2: पेरेंट्स को पहले तो जो हमारे पेरेंट्स हैं सारे, वो पेरेंट्स जो एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता हैं स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल्स के अंदर, उनको तो रिलेटिव जीपीए के बारे में पता होता है, लेकिन एकेडमिक यूनिवर्सिटी लेवल के अलावा जो पेरेंट्स हैं स्कूल में है कॉलेज में है या डिफरेंट एकेडमिया में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, उनको रिलेटिव जीपीए तो पहले तो समझना पड़ता है कि वो है क्या। दूसरा उनको कौन समझा रहा है रिलेटिव जीपीए, उनका बच्चा समझा रहा है
1: जी।
2: बच्चे को खुद ही नहीं पता तो वो समझाएगा क्या, तो जो पिक्चर बच्चे ने पेंट करनी है उन्होंने वही समझ लेनी है।
1: बिल्कुल।
2: तो बजाय इसके कि बच्चा जाके पेरेंट्स को समझाए, इन माय ओपिनियन जो हमारे पास पेरेंट टीचर मीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट हो या आपकी जो ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन सेशन में आप टारगेट स्टूडेंट्स को ना करें, स्टूडेंट के पेरेंट्स को करें। स्टूडेंट के पेरेंट को अगर पता होगा कि रिलेटिव जीपीए सिस्टम क्या है तो बच्चे को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। हमारे यहाँ जब ओरिएंटेशन सेशन किया जाता है, जब नया बच्चा एंटर हो रहा होता है, उसमें टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स होते हैं, साथ में पेरेंट्स भी मौजूद हैं। आप बेशक स्टूडेंट को टारगेट करें, लेकिन आपने स्पेशली ग्रेडिंग सिस्टम या इस तरह के और जो इश्यूज होते हैं उसमें आपने पेरेंट्स को टारगेट करना है, पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट करना है, ताकि उनकी जो भी कंफ्यूजन है, उनकी जो भी रिजर्वेशन है, वो आप क्लियर करें, ना कि बच्चा जो ऑलरेडी कंफ्यूज है वो उनको डबल कंफ्यूज करके जाएगा।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त लिमिटेड है सर, जाने से पहले क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आप स्टूडेंट्स को कोई पैगाम देना चाहें, कोई गाइड करना चाहें रिगार्डिंग रिलेटिव और एब्सोल्यूट जीपीए के हवाले से? वैसे तो हमारा पूरा प्रोग्राम इसी हवाले से था, लेकिन एक एंड में कोई ऐसा पैगाम जो आपके ख्याल में कि जिस पे बच्चे को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके?
2: जी, मेरा स्टूडेंट्स को ये मशवरा होगा कि सबसे पहले तो रिलेटिव जीपीए के अगर आप सिस्टम में मौजूद हैं तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप सारे काम साथ साथ करें। मतलब अगर आपने आज एक कोई चीज़ पढ़ी है, कोई नया टॉपिक आपने स्टडी किया है, तो उसको आप ये नहीं कहें कि मैं एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज करूँगा, क्योंकि रिलेटिव जीपीए में अगर आप एग्जाम से पहले रिवाइज करने जाएंगे तो आपके लिए परेशानी होगी, क्योंकि कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा जरूर होगा जो साथ साथ स्टडी कर रहा होगा।
1: बिल्कुल।
2: चाहे उसकी परसेंटेज कम हो क्लास में, तो जो साथ स्टडी कर रहा होगा वो टॉप 5 के अंदर ऑटोमेटिक लाए कर जाएगा। तो अगर वो टॉप 5 के अंदर लाए कर सकता है, देन व्हाई कांट यू? सो एवरीबॉडी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस कि हर स्टडी मटेरियल को, हर लेक्चर को साथ साथ, चले मैं ये नहीं कहता आज स्टडी किया तो आज ही जाके पढ़ लें,
1: वीकली कर लें,
2: लेकिन अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डिंग नहीं होगी, जो कि एंड में जाकर रिलेटिव के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे ले लेते हैं, होती नहीं है रिलेटिव के अंदर, एब्सोल्यूट में भी होती है, लेकिन बच्चे अपने ऊपर सवार कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: दूसरा, आपने अगर रिलेटिव में चलना है तो आइसोलेट होके नहीं चलना। आपकी तो ये सोच डेवलप हो रही है स्टूडेंट्स में कि जी रिलेटिव का मतलब है कि आपस में कोलैबोरेशन नहीं करनी, ये एक वो सोच है जिससे आपके जना परेशानी और बढ़ेगी। कोलैबोरेट करके चलें, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल रिलेटिव जीपीए का है ही यही कि टॉप 5% नॉलेजेबल बचा।
1: बिल्कुल।
2: तो एवरीबडी कैन नॉट बी 100% कैन नॉट हैव 100% नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. तो आप जब कोलैबोरेट करेंगे तो आपकी स्किल सेट में इजाफा होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, और क्या पता कोलैबोरेट करने से ही आप टॉप 5 में जाएं. बगैर कोलैबोरेशन के आप टॉप 5 में बहुत कम जाते हैं. एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन इन जनरल इफ यू वांट टू बी इन द टॉप 5 कोलैबोरेट. कम्पीट करें, हेल्दी कम्पीट करें. अगर आप कोलैबोरेट नहीं करते तो ये हेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप रिलेटिव जीपीए को लेके चलें, और तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो मेंटल प्रेशर जो आप लोगों को एंड में जाके आते हैं वो भी नहीं होंगे, ग्रेड्स के भी इश्यूज नहीं होंगे, एंड यू विल एंजॉय दिस ग्रेडिंग सिस्टम.
1: सर अगर टॉप 5 में नहीं भी आप परफॉर्म कर पाते लेकिन एटलीस्ट लर्निंग तो आपकी इम्प्रूव हो ही जाएगी ना, अगर आप साथ साथ काम कर रहे हैं या टीम वर्क में कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं होता कि सिर्फ टॉप 5 में ही आए हर स्टूडेंट.
2: जी जी जी जी, देखिए टॉप 5 में तो हमेशा एक्सेप्शनल होता है, और जीपीए का पर्पज भी यही है कि एक्सेप्शनल को अलग कर दो और अच्छे को अलग कर दो.
1: जी
2: तो आप अच्छे तो रह सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक कोट है जो कि मैं उसको यहाँ मुझे बड़ा पसंद आया था वो कोड, इसलिए मैं उसको जहां मौका मिलता है मैं रिपीट करता हूँ. द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड, ये कोड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है.
1: जी.
2: इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक काम कंप्लीट करना चाहते हैं, आप कहते हैं यार मैं इस काम को परफेक्टली कंप्लीट करूंगा, तो आपकी डेडलाइन बाजों का निकल जाती है परफेक्टली कंप्लीट करने के चक्कर में.
1: बिल्कुल
2: द बेस्ट. लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मुझे एक काम पहले मैं कंप्लीट करूंगा फिर इसको ऑप्टिमाइज करूंगा और इसको इम्प्रूव करूंगा,
1: बिल्कुल,
2: तो आप टाइमली काम कंप्लीट कर लेंगे डेडलाइन से पहले.
1: बिल्कुल.
2: तो जब डेडलाइन आएगी तो एक गुड वाले के पास एक चलता हुआ प्रोटोटाइप होगा जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, और बेस्ट वाले के पास जो है ना चलती हुई चीज ही नहीं होगी.
1: बिल्कुल.
2: तो यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट जो है ना, द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड, तो वो लेके चलें और पहले काम कंप्लीट करें फिर ऑप्टिमाइज करें फिर रिफाइन करें.
1: बिल्कुल. लिसनर्स, हमारे प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं. हम अपने ऑनरेबल गेस्ट सर साजिद सलीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया.
2: थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच. मैं भी आपको जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस अच्छे सेटअप के अंदर बुलाया और मेरे साथ जो है ना एक सेशन, नॉलेजेबल सेशन जो है ना शेयर किया. थैंक यू वेरी मच.
1: लिसनर्स, आज के प्रोग्राम से ये पैगाम मिलता है कि ग्रेडिंग सिस्टम कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं बल्कि लर्निंग का एक टूल होता है. रिलेटिव ग्रेडिंग कंपटीशन पैदा करती है जबकि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्लैरिटी और फेयरनेस का एहसास देती है. असल बात यह है कि स्टूडेंट अपनी लर्निंग को समझें और टीचर्स ग्रेडिंग को गाइड के तौर पर यूज करें, प्रेशर के तौर पर नहीं. उम्मीद है आज की गुफ्तगू ने आपको अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को नए नज़रिए से देखने का मौका दिया होगा. सीखते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी वक्त इसी प्रोग्राम में. तब तक के लिए सुनते रहें FM 92.6 यूसीपी की दुनिया. अल्लाह हाफिज़.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: तरफ चलते हैं। जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग द टाइम फॉर टॉकिंग टू अस।
1: बहुत शुक्रिया आपका और आपके प्लेटफॉर्म का और स्पेशली आपकी टीम का कि अगर ये पैगाम किसी ऐसे बंदे को पहुंच जाए जिसको उसकी ज़रूरत है तो मेरा ख्याल है हमारा मकसद आज का भी हल हो जाएगा और अल्लाह ताला हमारे लिए भी इंसेंटिव क्रिएट करेगा। और इन ये सब लिसनर्स में कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसके लिए मेरे अल्लाह ताला ने ये तमाम प्रोग्राम और रतब किया, जिसकी वजह से आप इतने अच्छे लग रहे हैं, ये भाई हमारी मेहनत कर रहे हैं और मैं भी आया हूँ ताकि उस बंदे को मैं पोस्टमैन हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि लफ्ज़ मैं जो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, सब तारीफ़ है मेरे अल्लाह की, सब तारीफ़ है मेरे अल्लाह की। जो एबिलिटीज़ होती हैं हमें पढ़ाने की, पढ़ने की, सिखाने की, दिखाने की, सूंघने की, खाने की, ये सब मेरे अल्लाह ताला की तरफ से है। जो लफ्ज़ मैं है वो बहुत बड़ा फसाद है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जी मैं एक पोस्टमैन हूँ 22 साल से, और जो पोस्ट किसी के लिए आती है मेरा काम है उसको वैसे जो के तू पहुंचा देना।
0: बहुत शुक्रिया जा साहब। यूजली हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं प्रोफाइल से, आपकी जो बचपन और जवानी और कहां से आप चले और कहां तक पहुंचे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके उसको बाद में लेके जाना चाहता हूं। लेकिन एक जो बड़ा इंटरेस्ट आपके इंट्रोडक्शन से ही क्रिएट हो चुका है, स्पिरिचुअल हीलिंग और ऑरा रिपेयर, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे सामीन के लिए बताएं।
1: देखिए, पहले जमाने में जो भी लोग आते थे वो फैज़ पे हम यकीन करते थे। हमारे मेरे अपने 9 उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फैज़ जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कश बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मगर हमारे जो नए बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो हमसे ज़्यादा ब्रेडी हैं, क्योंकि आप होम्योसपियन से लेके जब से अकल को थोड़ा सा पॉलिश किया गया और चीज़ों की सीमत खुली तो अल्लाह ताला ने भी अपने जो है ना हिकमत के वो पर्त खोलने शुरू कर दिए। देखें, हमारी 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना वो ईवल आइडेंटिटी से होती है। ईवल आइडेंटिटी को समझे बगैर आप ऑरा को नहीं समझ सकते। ऑरा आपका मेन इम्यून सिस्टम है, जो आपकी ये बॉडी चला रही है ना, जिसमें लंग्स है, हार्ट है, किडनीज है, आपका ब्रेन है, ये सब इसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक हाला बनाया हुआ है, जिसको जिसमें मिसाली कह सकते हैं उर्दू में। मेरी इस पे ऑरा के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल की रिसर्च है, जब मैं पहले ऑरा जी। तो ऑरा ही आपका इम्यून सिस्टम है, आपके चैनलाइज एनर्जीज। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑरा क्रिएट कैसे होता है। अगर ऑरा आपका कमज़ोर हो तो ख्वातीन के बाल क्यों गिरते हैं, उनको नज़र क्यों लगती है, एजिंग की तरफ क्यों चले जाती है, डिप्रेशन में क्यों चले जाती है, बच्चे ऑटिज़म के शिकार क्यों होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो कि मेडिकल साइंस, अभी मैं इस पे बात करके आया हूँ NHS UK में, उनको समझा के अपनी तरफ से, अल्लाह करे उनको भी चीज़ों की शनाख्त हो जाए। तो ऑरा बेसिकली आपकी बॉडी के इर्द गिर्द साथ एक लहर होती है जो आपको नेगेटिव एनर्जी से, आपको नज़र से, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आप बारहा हदीसों में सही बुखारी ले लें, उनने कहा था कि जो आखिरी दिन होंगे तो उसमें ज्यादा जो अमवात हैं वो नजर से होंगी। तो उसको क्या किया कि एक खास तबका है यहाँ पे, उनके पास आप चले जाएं, वो जाहिर बात है डिमांड को ही सप्लाई है, लोग उनके पास जाते हैं तो वो तो उनको या वज़ाइफ पे लगा देते हैं। वज़ाइफ पढ़ना बरकत के लिए बहुत अच्छा है, वज़ाइफ अल्लाह की खुशनुदी कि आपने, आपकी सास ने या आपकी नंद ने, आपके भाई ने ऐसा ऐसा किया हुआ आपके साथ, वो यहाँ पे मुझे तो लगता है जब मैं आया हूँ लाहौर में तो मैं तो अभी सारी दुनिया में जाता हूँ, मेरे लेक्चर्स होते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगा कि आधे लोगों ने जादू करवाया हुआ है और आधे लोगों पे हुआ हुआ है और किसी को कोई काम नहीं, या आधे ख्वातीन जो है ना उनके ऊपर जिनात है, जिनात भी इतने फारिग नहीं होते, पोजेस एनर्जी एक और चीज़ होती है, उस पर भी हम बात करते हैं। तो मैंने कहा ये मेरा मुल्क है, इसका बड़ा कर्ज है मुझ पर, मुझे पहचान मेरे मुल्क ने दी, मेरा नाम मैंने, जब मुझे कोई कहता है कि वेर यू, खासकर आजकल तो चाहे सियासी कोई भी हालात हो, मुझे सियासत का बिल्कुल नहीं पता, मगर आजकल मैं किसी को बताता हूँ, आप I'm based in UK for the past say 22-25 years. So जब किसी को मैं बताता हूँ कि I'm from Pakistan, तो at least लोग acknowledge करते हैं कि यार ये कोई country है। तो इसका हम सब चीज, हर चीज का सदका होता है, आपकी माल का सदका होता है, आपकी फरासत का सदका होता है, आपकी औलाद का सदका होता है, आपके हर चीज़ का सदका। ये जो इतना खूबसूरत रेडियो स्टेशन है, इतनी अच्छी न्यूज़, इसका भी सदका है कि जब आप नादार लोगों को थोड़ा सा कुछ इसकी इज्जत देंगे तो इसका सदका निकलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने मुझे कोई भी नॉलेज दिया, मेरा मैं इस काबिल था भी नहीं, अल्लाह ताला का करम रहे, मैं तो मैं इसका सदका ये कि मैं ये पैगाम हर उस बंदे तक पहुँचाऊँ جو سننا بھی چاہے جو نہیں بھی سننا چاہے اگر سن لے گا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا, نہیں سنے گا تو باقی ٹرش میں ڈال دے گا اس کو.
0: تو اورا کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ ہر انڈیویجول کے گرد اس کا ایک اورا ہے.

0: ऑरा हर चीज का होता है।
1: अच्छा।
0: ऑरा कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब एनर्जीज हैं। ये जिस कुर्सी पर बैठे
1: लिविंग थिंग्स की आप बात कर रहे
0: हैं? नहीं, हर चीज।
1: अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स की
0: भी चीज। देखिए,
1: सही,
0: आपकी हर चीज की एक एनर्जी है ना, ये कोई सॉफ्ट फॉर्म है, कोई हार्ड फॉर्म है। ठीक,
1: बिल्कुल ठीक है।
0: आप इसको इस तरह ले लें कि आपके बॉडी के अंदर 7 चैनलाइज सिस्टम है, जिसको उर्दू में लताइफ कहते हैं। इस पे बड़ा काम किया हमारे सूफी हजरात ने। जापानीज में इसको ची कहते हैं। तमाम मजाहिब इससे मुतफिक हैं उन एनर्जी पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा, संस्कृत में उसको चक्रा कहते हैं। लोग समझते हैं ये हिंदू मिथोलॉजी है। नहीं भाई, ये हमारी खोई मीरास है। इलम जो है ना, वो हम मोमिन की खोई मीरास है। और हमने किसी में, और जो भी चीज हमें कहीं से मिलेगी, हमारा हक है उसके ऊपर लेना। क्योंकि वो संस्कृत में जो व्हील होता है उसको चक्रा कहते हैं। क्योंकि ये जो आपके अंदर एनर्जी पॉइंट होते हैं, ये गोल होते हैं जो साहिब नजर है, जो उसको देख सकते हैं। ये आपके अंदर जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो इनमें मैनेजमेंट की अलग होती है, उसमें फाइनेंस की अलग होती है, उसमें मोहब्बतों के लिए आका करीम का रंग है ग्रीन, मेरे अल्लाह का, अल्लाह ने उनको सेग्रीगेट किया, जैसे लाल रंग मेरे अल्लाह ताला ने हुसैन के लिए दिया है। मैं किसी मकतबे को मतलब मैं किसी फिरके को नहीं मानता। मैं कहता हूँ जी अल्लाह मुझे उतना हजरतुल विदा तक का मुसलमान रख दे कि जहाँ आका करीम ने अपना खुतबा ख़त्म किया वहाँ से मैंने शुरू करना है। मैं वैसे भी किसी फिरके पर यकीन नहीं करता। और ये हमारी जो व्यूअरशिप है या जो लोग हमें सुनेंगे वो सारे एक मुसलमान तो हो नहीं सकते। तो हम वो बात करेंगे कि जो जिस पे हमारा वो जो है ना, वो जैसे आका करीम सबको अपने गिर्द गिर्द मिलाते, तो हमारी पैगाम सबको पहुंचे। हमने किसी एक स्कूल ऑफ थॉट को उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। तो ये जब एनर्जी 7 चैनल होते हैं, एक वही बात हो रही थी, एक मोहब्बत का रंग होता है, फिर एक थ्रोट का होता है बोलने की सलाहियत अल्लाह ताला देता है, फिर एक थर्ड आई होती है समझने की सलाहियत, फिर एक क्राउन होता है जिसमें अल्लाह ताला का कनेक्शन अगर स्ट्रांग हो जाए तो आपको वसवसे कम आते हैं। जब ये तमाम एनर्जीज क्रिएट होती हैं तो ये आपके स्पाइन के जरिए आपके माइंड तक पहुंचती हैं। माइंड उसको एक फ्रिक्वेंसी में डाल के आपके इर्द गिर्द एक लेयर बना देता है जिसको हम ऑरा कहते हैं। ऑरा अगर स्ट्रांग हो तो आपको नजर नहीं लगती, और अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आपके, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव, आप पॉजिटिव आदमी है तो ऑरा उस वाइब्स को जो करीबी लोग हैं उन तक पहुंचा देगा। मिसाल के तौर पे खातून है, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, बड़े अच्छा शीज वेरी मेकअप, बड़ा अच्छा मेकअप भी करती हैं और ये वो, मगर अंदर से वो स्ट्रेस है, अंदर से वो परेशान है। तो बाहर से वो खुश नजर आने की जितनी भी कोशिश करेंगी ना, तो वो उससे क्या होगा कि उनके जो लोग जाएंगे, उनके पास वो जाएंगी तो उसकी पाइनियर ग्लैंड से लोगों को पता चल जाएगा कि ये डिप्रेस है। तो ऑरा बेसिकली आपका सबसे इम्पोर्टेंट विजिटिंग कार्ड है।
1: बिल्कुल ठीक है। ऑरा के बारे में बड़ी ही, क्योंकि मैं समझता था और बहुत सारे सामईन भी ये समझते हैं कि ऑरा कोई कलेक्टिव चीज़ है जो कि हम किसी भी जो पोजेस करता है, और एक इंसान इंडिविजुअल का एक ऑरा है। आपने इस पे बड़ी अच्छी बात किया। हमने इजाज़ साहब अपने सामईन को साथ साथ म्यूज़िक के थ्रू महसूस भी रखना है, और अभी प्रोग्राम में वक्त है एक म्यूज़िक ब्रेक का, और जब म्यूज़िक ब्रेक से सामईन वापस आएंगे तो ये मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं किसी इंडिविजुअल से मिलता हूं तो मैं बड़ा बूस्ट अप महसूस करता हूं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ऐसे इंडिविजुअल से भी मुलाकात होती है या 2-3 लोगों से ऐसी मुलाकात होती है जो मुझे बज़ाहिर बहुत अच्छा फील करवा रहे होते हैं, लेकिन मैं उनकी कंपनी में बहुत अनकम्फर्टेबल होता हूँ, बड़ा स्ट्रेस्ड होता हूँ, बड़ा जो अनकम्फर्ट सी एक फील आती है। हालांकि वो मुझे कुछ कह नहीं रहे होते और वो बज़ाहिर मेरे साथ बहुत बेहतर होते हैं। आपके साथ भी यकीनन ऐसा होता होगा। तो ये और इस तरह के बहुत सारे सवाल और नज़र वगैरह के हवाले से जो बात है, ये हम ब्रेक के बाद करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: जी सामीन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ। और आज मंजिल में इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो फिजिकली शायद हमें नज़र नहीं आती लेकिन महसूस ज़रूर होती हैं। और ऑरा के हवाले से एजाज अहमद खान दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पर जब हम गए थे तो उससे पहले हमने कुछ सवालात एजाज साहब के सामने रखे थे और वो मेरे और आपके सवालात हैं, वहाँ से ही शुरू करते हैं। एजाज साहब, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिससे हमारी एनर्जी बड़ी ज़्यादा हो जाती है, हालांकि उसने हमारे साथ कोई अच्छा नहीं किया होता है, नॉर्मल होता है। और वाइस वर्सा ऐसा होता है कि किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया होता लेकिन आप कह रहे हैं यार बस जाऊं मैं, ये कंपनी छोड़ूं, तो ये इसकी क्या साइंस है?
2: देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर पैनियल ग्लैंड सिस्टम रखा हुआ है, महसूस करने की सलाहियत रखी हुई है। फिर अल्लाह ताला ने आपके अंदर तमाम एहसास रखे हुए हैं। हम सब के अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं होती है, मगर कुछ लोग उसको जितना ट्रिगर कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप बॉडी बिल्डर्स को देख लें, वो अपने मसल्स को बिल्डअप कर लेते हैं तो बाकी लोगों से डिफरेंट हो जाते हैं, एथलीट्स हैं वो ज़्यादा स्टम। इसी तरह आपके अंदर एक पूरी कायनात है, पूरी कायनात, आप जब उसके मामलात को समझ आते हैं ना अली भाई, तो आपके लिए अल्लाह ताला की मोहब्बत और बढ़ जाएगी कि मेरे अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या मेहरबानियाँ की हैं। अगर आपके साथ कोई बंदा सिंसेयर नहीं है या उसके अंदर सिर्फ, देखें, जो लोग माफ नहीं करना चाहते, जो लोग लोगों के साथ मोहब्बत नहीं करना चाहते, जिनके अंदर हसद हो कीना हो, हसद बोझ और कीना, ये तीनों ऐसी चीजें जो इंसान को सबसे ज्यादा डैमेज करती है, अपने लिए भी, अल्लाह की नजर के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो ऐसे लोग जैसे ही आपके रेडियस में आएंगे, देखें, इंसान वांटेड टू, एवरी पर्सन वांटेड टू बी हैप्पी, खुशी हमारा हक है। अल्लाह ने ये सारे पैगंबर आपके लिए इसीलिए भेजा है कि आप खुश हो। खुश होने का मतलब है कि आप सही रास्ते पे चले, खुश होने का मतलब है कि आपको सही मंजिल मिले, खुश होने का मतलब है कि आपको कंफर्ट मिले। इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई जिसमें तमाम हवाएं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दरख्त, फूल, जानवर, ये इतनी खुशनुमा दुनिया किस लिए अल्लाह ने आपके लिए मरतब की? ये इतने अच्छे रंग क्यों दिए? ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते थे, उसको पूछने वाला कौन है? आपको कंफर्ट किया। तो वो लोग जो कि पॉजिटिव नहीं होते, जब वो आपके ऑरे के साथ उनका ऑरा मैच करता है तो कहीं ना कहीं आपका शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है। और जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो लोगों को मोहब्बत से देखते हैं, आपके लिए ताजीम है, उनके अंदर कम गरज है। इंसान देखें, हम गलतियां भी करेंगे, हमें गुस्सा भी आएगा, हम जो है ना, हम मगर हमने ऊंट की तरह उसके ऊपर कीने को पालना नहीं, हमने माफ करते रहना। आपको मैं अर्ज करता हूँ अली भाई, जिस बंदे में माफ करने की टेंडेंसी आ जाए ना, वो अल्लाह के इतने करीब हो जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं इंसान होके किसी एक इंसान की गलती को माफ करता हूँ तो अल्लाह ताला तो अपनी शान के मुताबिक मुझे रिटर्न देगा ना, तो वो मेरी करोड़ों गलतियां माफ फरमा देंगे, इनामात दे देंगे कि इसने मेरी एक पेंटिंग को। अल्लाह ताला अपने इंसानों के बारे में बड़ा सेंसिटिव है। आपने इतनी अच्छी टाई पहनी हुई है, इतना अच्छा ब्लू सूट है, रुमाल है, मैं इसकी तारीफ करूंगा तो शायद आपको इतना खुशी ना हो, आप ये कोई भी खरीद सकता, मगर अगर आप कोई दो लफ्ज लिखेंगे या कोई शेर सुनाएंगे या कोई पेंटिंग बनाएंगे तो मैं भी उसकी तारीफ करूंगा ना, तो आपकी इन्वेंशन है, आप बड़ा अच्छा फील करेंगे। हम उसकी इन्वेंशन है, हम उसकी पेंटिंग है अल्लाह ताला की। कोई बंदा जब उसकी पेंटिंग से प्यार करता है ना, तो अल्लाह ताला अपने पेंटिंग के बारे में बड़ा सेंसिटिव है। जिसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह की क्रिएशन की तो अल्लाह ताला कितना बड़ा होगा। तो जब कोई बंदा नेगेटिव होता है और आपके करीब आता है तो कहीं ना कहीं आपके पैनल ग्रांड सिस्टम से आपकी रिकॉर्डिंग आ जाती है कि इससे भागो, क्योंकि हम उदास रहना नहीं चाहते, हम अपने आप को खुशियों से दूर करने चाहते। कोई भी, मैं आप अक्सर अपनी मैं रोजाना 100 से लेके यहाँ पे जब से पाकिस्तान आया हूँ सेशन के अलावा 60 रही मैं खान कराची, आप यू नेम द पीपल, सुबह जब मैं उठा होता हूँ, मैंने कल एक दोस्तों कहा कि यार वो मुझे गिला कह रहा था कि आप आ नहीं रहे, मैंने कहा भाई मैंने सुबह नाश्ता शाम 7 किया, इतना रश था, आते हैं लोग जिनके देखे, मैंने तो कहा मेरा तो कोई कमाल नहीं है, मैं तो पोस्टमैन हूँ। तो जो बंदा भी आपको खुशी देगा, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है, आप उसके पास भागेंगे और जिस रिलेशनशिप से आपको कांटे चुभेंगे, कोनियां चुभेंगी और हर वक्त ताने हर वक्त, तो फिर हम उससे दूर हो जाते हैं। तो कुछ लोग जाहिरी तौर पे अगर आपको अच्छा बता रहे हैं तो उनका औरा तो आपको बता देता है ना कि वो तो वो
1: अच्छा नेगेटिव, वो नेगेटिव भी आपस में कोइंसाइड करके कोई इंपैक्ट क्रिएट करते हैं।
2: सर बिल्कुल करते हैं ना, जिस बंदे का आपने नोट किया होगा एक वक्त में आपके दोस्त और तरह के होते हैं। एक कुछ वक्त होता है जब आपकी ज़हनी बलोगत शुरू होती है, आपकी देखिए आपका माइंड हर घड़ी के टिक की तरह मैच्योर हो रहा है। अगर आपने स्पिरिचुअली आपने आपको स्ट्रांग कर दिया, अगर आपने फिजिकली और आपकी मेंटली स्ट्रांग हो गए तो आपके दोस्त ऑटोमेटिकली उस तरह बनते जाएंगे। अगर आप खुशबू बांटने वाले होंगे तो आप बतार की दुकान में बैठेंगे, अगर आप बदबू बांटने वाले होंगे तो किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहां से बदबू हो। तो जिस बंदे का जितना स्ट्रांग ऑरा हो उतना ही स्ट्रांग लोगों में बैठना पसंद करता है वो।
1: अच्छा हमारे यहाँ एक बड़ी टर्म लिटरेचर में भी और वैसे भी यूज़ की जाती है, लव एट फर्स्ट साइट। तो ये इसमें भी कोई ऑरा वगैरह, ये पहले बताएं कि होता है या नहीं होता, और इसमें ऑरा का कोई कि कोई एक तरह का ऑरा या कोई मोहब्बत का ऑरा अगर वो उस ऑरे में आ जाता है तो ये भी कोई इस तरह की बात है?
2: देखें जी बिल्कुल है उसकी, मगर एक इससे बात जरूर कर लें। हमारी लॉर कॉलेज फॉर वुमेन लेक्चर था तो मैंने अपनी बहनों से पूछा या बेटियों से कि आप लोगों में से कितने लोग समझते हो कि आप खूबसूरत हो, तो उसमें से काफी रश था, तो उसने चार पांच लड़कियों ने, बाकी ने हाथ नहीं उठाए। तो मैंने कहा आप सब खूबसूरत हो, सब आपका लॉक एंड की कम्बिनेशन बना दिया है अल्लाह ताला ने। जिसको आप खूबसूरत लगेंगे ना वो आपको अल्लाह ताला ने उसके लिए प्रोग्राम्ड किया हुआ है, उसने उसको आपके लिए प्रोग्राम किया हुआ है, उसको आप दुनिया के सबसे खूबसूरत, आपके ये नहीं कि सिर्फ हाथ खूबसूरत लगेंगे, आपकी आंखें खूबसूरत लगेंगे, या सिर्फ आवाज, जो बंदा आपको ये कहता है कि आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, तो इसका मतलब बाकी चीज कचरा है आपका, फेंक दें उसको। अगर आपको कोई बंदा कम्बिनेशन आपको मिल जाए, और जरूरी नहीं कि लाकर की कम्बिनेशन सिर्फ एक बना हुआ, एक भी हो सकता है तो भी हो सकता है, जिंदगी में लोग आते हैं जाते हैं किसी का, मगर अल्लाह ताला ने जुलम नहीं रखा हुआ ना, वो मेरा जिस अल्लाह को मैं जानता हूँ ना वो सजा पे यकीन करता है ना वो आजमाइश पे यकीन करता है। ये सजाएं भी हम खुद चुनते हैं, ये आजमाइशें भी हम खुद अपने आप को, जो भी आप करते हैं उसका रिटर्न आपको आता है। न्यूरोपाथ है आप, मुझे कम्फर्ट देना शुरू कर देंगे अल्लाह ताला 11 गुना आपको देना शुरू कर देंगे, 70 गुना भी दे सकता है वो, और आप मुझे अनकंफर्टेबल करें ना, कोई किसी को ताने करें, बुली करें एक दूसरे को, तो वही अनकंफर्टेबल कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। हम जब किसी ऐसे बंदे को मिलते हैं ना, तो मैंने पहले अर्ज किया कि हमें उसकी शायद अपेरेंस इतनी फैसिनेट ना करती हो। बड़े लोग अक्सर एक दूसरे को जिद करते हैं कि यार तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगा, लड़कियों कहते हैं कि हमारी बहनों का कि तुम्हें अच्छा, या लड़कों कहते हैं कि यार वो, मगर उसको क्या पता कि हो सकता है अल्लाह ताला ने उसको पंचिंग उसकी लॉक इन की कम्बिनेशन में वही उसकी चाबी हो। देखिए हम तो जो है ना आलम बरज़ख में करोड़ों साल रहते आए हैं, हमारी रूहें वो तो उम्र रबी है, वहाँ पे पहचान भी होती है, वहाँ पे बात भी होती है, हो सकता है हमारी वहाँ पे शनासाई हो, या हो सकता है हमारा ऑरा एक हो, या हो सकता है हमारा वो जो एनर्जी पॉइंट्स हैं उनकी आपस में जो जो फ्रिक्वेंसी है वो एक लेवल की हो, एक दूसरे को अटैक करे। जरूरी तो नहीं कि खातून खातून को करे या मर्द खातून को करे या इस तरह के, कोई भी आपको कर सकता है। आप यकीन करें कभी कभी हम बैठे होते हैं किसी ट्रेन में जहाज में, कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा या कोई भी आपको बड़े फैसिनेट करते हैं, आपका दिल करते हैं उनकी खिदमत करें, उनसे बात करें। कोई बुजुर्ग औरत बैठी होती है अकेली, आप जाके बैठ जाते हैं, वैसे भी हमें बैठना चाहिए। ये जो डिसेबल बच्चे हैं 70 साल से ऊपर लोग हैं, इनके पास जाके बैठने से, आपके नेचर में जाके बैठने से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मगर इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कि ये नजरबद जो लोग जगह जगह कहते हैं कि नजरबद क्या है, इसका साइंटिफिकली प्रूवन कैसे है और इससे बचा कैसे जा सकता है।
1: बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू है और बड़ी मेरा दिल करता है और कर रहा है कि मैं बस आपको सुनी जाऊं और आप बोलते ही जाएं, लेकिन प्रोग्राम में हम जा रहे हैं म्यूज़िक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इनसे इजाज़ साहब से ये पूछेंगे कि किस तरह से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपना ऑरा बिल्ड कर सकें और ख़ास तौर पे बीमारियों से महफूज रह सकें, और अगर हम किसी बीमारी का शिकार हैं तो किस तरह से हम क्या टिप्स अपना सकते हैं जिनसे हम उनकी शिद्दत को कम कर सकें या उन पर काबू पा सकें। तो हमारे साथ रहिएगा, म्यूज़िक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
2: जी सामीन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाज खान जो कि फेथ हीलर हैं और ऑरा रिपेयर स्पेशलिस्ट हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग पे इनका बहुत काम है, और यूके से तशरीफ लाए हैं, और आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज अपना जो नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और ऑरा के हवाले से साइंटिफिक इनकी जो गुफ्तगू थी वो बिल्कुल एक एक इंसान के लॉजिक पार्ट को और जो उसके रैशनल पार्ट है उसको, वैसे बीइंग अ मुस्लिम हम इस सारी चीज़ों को बिलीव तो करते हैं लेकिन जो जिस तरह लॉजिकल सीक्वेंस इन्होंने बिल्ड किया है ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। इजाज़ साहब, हमें बताइएगा कि बीमारियाँ जो हैं बहुत सारी आजकल हम कोई ना हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी का शिकार है, तो ये जो आपका नॉलेज है जिस पे आपका काम है फेथ हीलिंग और ऑरा रिपेयर के हवाले से, तो बीमारियों से हम किस तरह से काबू पा सकते हैं इस इल्म को इस्तेमाल करते हुए?
3: देखिए जी, इसका तो काम ही हीलिंग है। आपका ऑरा आपका मेन इम्यून सिस्टम है, उसी ने आपके स्पाइन के जरिए जाके एनर्जी क्रिएट करती है। आपका माइंड जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो दिनों में आपको बीमार कर सकता है, दिनों में आपके बाल झड़ सकते हैं, आपकी स्किन खराब हो सकती है, तो अगर आपका ऑरा रिपेयर हो जाए तो जितनी भी एनर्जी सिस्टम आपके अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो ड्रेन होने से बच जाएगी, बाहर से नेगेटिव एनर्जी आना बंद हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड वो चीजें दोबारा रिपेयर करना शुरू कर देगा जो डैमेज है। अभी की इनके डायबिटिक लोग होते हैं, जब वो आते हैं एक खास किस्म के पीस ऑफ माइंड में, एक खास किस्म के कैथारसिस में, उसके साथ जाहिरी बात है उन्होंने अपनी बाकी चीजें भी करनी है, बदपरहेजियां नहीं करनी, मगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको आपका स्ट्रेस आपकी एंजाइटी, और ये दोनों तब होती हैं जब अल्लाह ताला पे आपका यकीन कम होता जाता है। मैंने अल्लाह ताला भी यकीन करने के बाद आपको स्ट्रेस क्यों होगा, आपको एंजाइटी क्यों होगी, आपका ऑरा ब्रोकन है तो उसके बाद ही मेडिकल प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज आप लेते हैं, आपके चैनलाइज सिस्टम काम नहीं करते, आपके स्पाइन के जरिए वो एनर्जी माइंड तक नहीं जाती, आपके इन्वेंशन सेल नहीं क्रिएट होते, आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, आपको बंद गली लगती है, मगर यही जहन में अगर आपके वो एनर्जी पहुंच जाए, आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ जाए, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम चुटकियों बजाते हुए आप हल कर।
2: अच्छा, बीमार लोगों को ऐसी को दो तीन बातें बताएं कि जो उनको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और दो तीन चीजें अपना लेनी चाहिए ताकि वो अपनी बीमारी पे काबू पा सकें।
3: सर, बीमारी पे काबू पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काबू पाना पड़ेगा। बीमार वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आपका माइंड इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लेता है आपकी बॉडी से कि आप सोच नहीं सकते। वसवसों को जाने दें, डर को जाने दें, शक को जाने दें, जो होता है उसको अल्लाह ताला की राजी पर रजा समझे अपने आप को। लोगों के साथ गुस्सा करना बंद कर दें, अगर आप यकीन करें, और उसके बाद भी आप यकीन करें, ये मैं मुसलमान बहन भाइयों को एक बात बता रहा हूँ, अगर आप सुबह उठते ही 10 दफा, ये मेरी अपनी आजमाई बात है और करोड़ों लोगों की आजमाई हुई बात है कि सुबह उठ के 10 दफा अगर आप सूरह कौसर पढ़ते हैं, अगर आप या हफीजो पढ़ के निकलते हैं, और वो हजारों देखें अल्लाह ताला ने अगर कबूल करना है तो एक अखलास के लफ्ज़ कर लेगा, हजारों दफा पढ़ेंगे ना एक जगह बैठ के तो हो सकता है वो भी ना कबूल करे। और दुरूद और विर्द एक ऐसी चीज है कि जब आपने सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आपने उसको अपने ऊपर तारी करना है, अपने एक्शंस में आपने रहीम बनना है, अपने आका करीम के अखलाकियात को सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं, आपने अखलाकी तौर पे उसका नमूना कोशिश करनी है। देखिए, उनकी तरह कौन बन सकता, मगर अगर हम उनकी अखलाकियात पे चलेंगे तो जैसे जैसे आप लोगों को माफ करेंगे, जैसे जैसे आप अपने अंदर से वो चीजें निकालेंगे, आपका ऑरा मजबूत होगा और आपका माइंड आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देगा। यकीन करें, मैंने पिछले कोई साल में ऐसी ऐसी चीजें होती, देखिए करना सब अल्लाह ने, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई हीलर तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कनेक्टिविटी विद गॉड ना हो। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जब डॉक्टर बात सुनता है, वो पेन उठाता है और वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो उस 3 सेकंड में वो भी अल्लाह ताला उसके जहन में डालता है कि ये लिख के दो, مگر جس کی کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو. جو صرف لوگوں کے ساتھ وہ صرف کاٹنے پہ یقین نہ کرتا ہو, پھر تو اس کا ایک وائف آئے اللہ کا علی, اس سے آپ اپنا آپ کو ٹیون کر لینا تو آپ کو ڈاؤن لوڈ وہاں سے آنے شروع ہو جائے گی. ایک اور ہے, اف یو بلیو ان اے گاڈ یو ہیو ٹو بلیو ان دا ایول ایز ویل, تو اس کا بھی تو اپنا ایک وائف آئے, اگر اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو وہاں سے چیزیں آ جائیں گی, پھر بیماریاں بھی آئیں گی, پھر اسٹریس بھی آئے گا, پھر باقی معاملات بھی آئیں گے.
2: اچھا اجاز صاحب, تقریباً کوئی آدھے پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے, اور ہمارے ہاں بڑی یہ پریکٹس ہے کہ ہم جب بھی گھروں میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہم ایک اس سے ایک پریکاشن بھی لیتے ہیں کہ کوئی نظر بد ہمارے مذہب میں بھی ہے اور ویسے سائنٹیفکلی بھی پروف ہے. تو جو نظر بد جن کو لگی ہے اور یہ نہ لگے, دونوں کے لیے آپ بتائیں کچھ ہمیں کہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں.
3: سر دیکھیں, آپ نے جو فرمایا کہ آدھے پاکستان کو لگتا ہے کہ ان کو نظر بد لگی ہوئی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں, ہو سکتا ہے 80% نظر بد جو ہے نا وہ پروون ہے سائن. میں اگر آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں تو میں آپ کی طرح کپڑے پہنوں گا, بات کروں گا, مگر جب میں نہیں بناؤں گا تو میں آپ کے لیے حسد کریٹ کر لوں گا. حسد کیا ہے؟ کیمیکل کریٹ کروں گا نا, اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا جائے گا, وہ بغض میں چلا جائے گا. پھر کینہ کا مطلب میں آپ کو نقصان کرنا چاہتا ہوں, تو کیمیکل اتنا زیادہ آپ کے لیے جو میں نے بنایا میرے مائنڈ میں اتنا پک چکا ہوگا, جب میں آپ کو دیکھوں گا تو اپنی سائٹ کے ذریعے وہ سیدھا تھرو کر دوں گا. اگر آپ کا وہاں بھی اورا آتا, اگر آپ کا اورا بروکن ہو اور آپ کا, تو وہ سیدھی آپ کی وہ چیز ہے, کوئی کڈنی ڈیمیج کر دے گا آپ کی زندگی سے. جو ہم بندش کہتے ہیں وہ کیا ہے, اگر نظر لگنے سے آپ کے اورے سے فائنانس کا رنگ اڑ گیا تو بندش ہو گئی, آپ کو پیسے آنے بند ہو گئے. آپ کی اگر گرین کلر ہو گیا تو لوگوں سے آپ ویسے ہی لڑنا شروع کر دیں گے, بیگم میں, میاں بیوی میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, بچوں میں پھر وہ انرجی جائے گی, پھر اس کے بعد اور بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو نظر واقعی اس کو وی نیڈ ٹو ایڈریس اٹ ان ویری.
2: سر بچہ کس طرح جا سکتا؟
3: سر اس سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا اورا اسٹرانگ ہوگا. اورا اسٹرانگ کیسے ہوگا؟ اگر آپ کے ایک الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ اتنی اسٹرانگ آپ کرتے تو نظر نہیں لگتی, اورا ٹوٹنے کے بعد نظر بھی تب لگتی ہے. اس سے بچا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مسلم مانے, جیسے میں نے عرض کیا, اور آپ کا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے, سب کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے, ماننے والے آٹا ایک ہے پیڑے الگ الگ ہیں, میرے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو بھی وہ کرے. تو آپ اگر سورہ کوثر صبح پڑھ کے اٹھے اور آپ یا حفیظ پڑھے تو نظر کا اس سے بہت اچھا علاج ہو سکتا ہے. وہ جو چیزیں ڈیمیج ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کوئی ہیلر ہی ریپیئر کرے گا. آپ کو ایک عرض کر دوں, یہاں پہ ایک عجیب سا فینومینا دیکھا, اگر آپ کی جوتی ٹوٹ گئی علی بھائی, آپ اس کو ٹیبل پہ رکھیں اور ہزار دفعہ وظائف پڑھیں اس کے اوپر, اسباب دنیا اللہ تعالیٰ نے دنیا چلائی ہے, اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی, مگر لے جانا آپ کو اس جوتی کو موچی کے پاس ہی ہوگا. وہ موچی بہت ضروری ہے, وہ موچی, وہ پلنگ بنانے کے لیے آپ کو بڑائی کے پاس جانا پڑے گا, ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا, کیونکہ اگر سب کام خود ہی ہونے شروع ہو گئے تو دنیا تو رک جائے گی. تو اسبابی دنیا بھی ہم نے کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی واقعی نظر ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو اس کا بڑے کی ہو رہے ہیں, وہ اس کے لیے ہم الگ سے ان شاء اللہ ٹائم رکھیں گے, اور ون بائی ون کی, کیونکہ مختلف کسی کی خواتین کی شادی نہیں ہوتی, ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں, کچھ چڑچڑی ہو جاتی ہیں, کچھ ملٹیپل ڈس آرڈر ہوتا ہے ان کو, کچھ پوزیس انرجیز ہوتی ہیں. تو یہ سب کو ایڈریس کر کے ون بائی ون آپ ان کی دیکھیں.
2: اچھا سر, ہم نے آپ کے انٹروڈکشن میں بھی بات کہی تھی, آپ کے تعارف میں بھی, کہ آپ اورا ریپیئر ہیں. تو ریپیئر کی جب ہم ٹرم کنونشنلی سن, کوئی چیز ٹوٹ گئی یا کچھ خراب ہو گیا تو کوئی ہم ٹیکنیشین کو بلائیں گے اور وہ ریپیئر کرے گا, اسے جوڑے گا, اسے ٹھیک کرے گا, اسے اپنی شکل میں لے کر آئے گا. تو جب اورا ریپیئر کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک انرجی ہے اور انرجی ٹینجیبل تو نہیں ہے, تو یہ کس طرح ریپیئر ہوتا ہے؟ آپ ہمارے سامنے کے لیے آسان الفاظ میں تھوڑا بتائیے.
3: دیکھیں جی, جو چیز خراب ہو سکتی ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. آپ کبھی پگڈنڈی پہ جا رہے ہو رات کو اور آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو, کسی گاؤں میں پگڈنڈی ہوتی ہے وہ گاؤں میں چھوٹی چھوٹی, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جہاں تک روشنی ہے یہی چیز ہے. میں جب رشیا سے پڑھ کے آیا, اب میں کمیونزم جو ہے نا, انہوں نے ہمیں کوٹ کوٹ کے ایسے بھری ہوئی تھی جیسے ہم بچے سائیکل میں ہوا نہیں بھرتے تھے کبھی, اس کو اپنے گلے میں دبا کے ایسے بھری ہوئی تھی. میں کہتا ہوں میرا اللہ میں نے خود ڈھونڈا ہے, بلکہ میرے اللہ نے مجھے ڈھونڈا. میں نے اپنا مذہب اپنے کسی آبا اجداد سے نہیں لیا, کسی معاشرے سے نہیں لیا. تو وہ یہاں پہ تو مذہب جو سب سے زیادہ چیز لوگ بیچتے ہیں وہ میرا اللہ ہے, اور بڑا سستا بیچتے ہیں. میرا اللہ تعالیٰ بہت قیمتی ہے, میں قربان جاؤں, اس نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا. तो वो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं था। हमारी न्यू जनरेशन समझते बिलीव ना करना, अपने आप को साइंस से ज्यादा अटैच करना बड़ा कोई मॉडर्निज्म या सोफिस्टिकेशन है। नहीं, मॉडर्न और स्पिरिचुअलिज्म दोनों एक चीज है, सिमते हैं अपनी। आप साइंस को कभी इससे जो भी तालीम है, आप मास कम्युनिकेशन देख लें, आप साइकोलॉजी देख लें, आप बॉटनी देख लें, आप MS देख लें, आप MBBS देख लें, आप रॉकेट साइंस देख लें, आप नासा टेक्नोलॉजीज देख लें, आप क्वांटम थ्योरीज देख लें, सब मेरे अल्लाह ने आपको आपके लिए दी है। इसमें से कोई अलग कोई एंटिटी नहीं आई नौजुबिल्लाह की जिसने ये बनाई है, तो सब अलूम अल्लाह के हैं। आप उनको किस, आपने यहाँ से साहिवाल जाना, आप साइकिल पे चले जाएं, आप घोड़े पे चले जाएं, आप जहाज पे चले जाएं, आप गाड़ी पे चले जाएं, है तो जाना तो उधर ही। तो बात यह है कि जैसे जैसे आप अपने आप को क्लियर माइंड करेंगे दूसरों के लिए वसवसे, अपने आप को स्कैन, जो बंदा बीमार होते हैं ना आप देखिएगा, वो बहुत जजमेंटल लोग होंगे, जिनको नजर लगती है ना वो भी बड़े सेल्फ पिटी और जजमेंटल लोग होते हैं। जब आप दूसरों की गलतियों को मक्खी की तरह स्कैन करना बंद कर देते हैं, मक्खियां जो होती हैं सिर्फ जाके गंद पे बैठती है। तो हमारे एक बाबा जी हैं वो कहते हैं जी कि अपने आप को मक्खी ना बनाओ, एक बंदे में हजार खूबियां वो छोड़ के एक छोटी सी गलती है उसको पकड़ लेते हो, कितनी तुम लोग, अल्लाह ताला ने फिर तुम्हारी गलतियां गिनवाए, फिर वो फिर हम डर जाते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें तो हजारों लाखों अल्लाह ने पर्दे डाले हुए, हमारे अंदर तो इतनी खामियां कि अगर मेरे अल्लाह ताला ने तो हमने कौन होते हैं। जो जो लोग जजमेंटल होते हैं, जो जो लोग स्कैनर, जिस तरह हम जाते नहीं टेस्को में, आजदा में, यहाँ पे उसका मुझे स्टोर्स का नहीं पता जो होते हैं डिपार्टमेंटल, तो वो बार कोड को स्कैन करते हैं ना तो प्राइस आती है, हमने वो स्कैनर दोनों हाथों में पकड़े हैं, जो बंदा आ रहा है ना टंग टंग टंग, हम नए बंदे को स्कैन करके उसको अपने जहन के मुताबिक, उस बेचारे को पता भी नहीं है बेचारे को, हम जजमेंटल नहीं होना, हमने लोगों की मुस्बत जो पॉजिटिव एनर्जी आप दे सकते हैं ना मुआशरे को, आपके पास वही आनी है, उसका ओवरफ्लो है, आपके न्यूरोपैथ है ना, आपने जिसको जो देना। आप जब बीमार होते हैं आप सदका शुरू करते हैं, आप सदका मुस्कुराहट का शुरू करते हैं, आप सदका मोहब्बतों का शुरू करते हैं, आपका ऑरा रिपेयर हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपकी जो चीजें, मैं हमेशा बात करता हूँ कि 21 दिन से 40 दिन में ऑरा रिपेयर हो जाता है, क्योंकि वो ब्रोकन हो जाता है। अगर आपको नजर लगे या आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो या एग्रेशन शुरू हो जाए या आपके अंदर इतना किसी बात से गिल्ट क्रिएट हो जाए या आपको कोई किसी ने कोई इतना ज्यादा बुली कर दिया हो, तो आप इतना आपने उसको, या कोई खवातीन है जो बेचारी ना सास की बातों को भी लेती हैं, हस्बैंड को भी कुछ नहीं कह सकती, माँ बाप को भी कुछ नहीं कहती कि वो बेचारे परेशान हो गए, और वो घुटी जाती है, तो उसका ऑरा भी ब्रोकन होता है, और उसकी नेगेटिव एंटिटी, वो जो जबत है, वो एनर्जी वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देती है, बच्चों में ऑटिज्म शुरू हो जाता है। ऑटिज्म जो है ना वो सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी पेरेंट में से एक बंदे की नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि बच्चा 13 साल तक अपनी एनर्जी नहीं बनाता, तो उस पर भी मैं बड़ा आजकल बता रहा हूँ कि बच्चों पर भी तवज्जो दो, मगर जो सोर्स है जिस जहां से ये एनर्जी आ रही है, वो औरत बेचारी जो किसी कोने में बैठी और किसी को कुछ बता नहीं रही, या वो लड़की जिस जो पढ़ना कुछ और चाहती है, पेरेंट्स के लिए कुछ और पढ़ रही है, या वो बच्चा जिसमें एबिलिटी किसी और चीज की, पेरेंट्स कहते हैं। मैं आपको आज ना एक सीक्रेट बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता जो मैंने नोट किया कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप भीख मांगेंगे, ऐसे ही होता है, सुनते हैं आप, और अगर आप पढ़ेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। देखिए ना फलां बंदा पढ़ा, आपने अपने मुआशरे में क्या कर दिया, आपने दरमियानी कोई सीमत ही नहीं रखी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भीख मांगेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो करोड़पति होंगे। वो बच्चा करोड़पति होने के लिए बन रहा है जिसकी बेस ही पैसा कमाना है, उससे क्या पॉजिटिव एनर्जी की उम्मीद रखेंगे आप? आपने तो इलम उसको देना अच्छे इंसान बनाने के लिए, आपने इसको इलम देना अच्छा मुआशरे का फर्द बनाने के लिए, आपने अच्छा इलम देना उसको अच्छा बाप बनने के लिए, अच्छा हस्बैंड बनने के लिए, कि वो वाला हस्बैंड बने जो मिसाली हो, वो वाला भाई बने जो मिसाली हो। आपने उसके साथ सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस अटैच करके कामयाबी के लिए एजुकेशन जब देंगे, तो जिसकी बुनियाद ही आप फाइनेंस पे रखेंगे तो उससे खुदा क्या मिलेगा, आपकी क्या इज्जत करेगा, वो मुआशरे को क्या देगा, वो हर चीज को सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। हमने न्यू जनरेशन को ये नहीं,
2: मटेरियलिस्टिक चीजों को हमने बहुत मटेरियलाइज कर दिया, और जिसकी वजह से हमारी जो बहुत सारी एनर्जीज हैं, हमारी सोच है, हमारी अप्रोच है, वो बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। इजाज़ साहब, आपसे गुफ्तगू करते हुए वक्त ऐसे जिस तरह सर पर ना पाँव रख के दौड़ा, जो एक मुहावरा है, और हमें बिल्कुल हम इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप कुछ मैसेज हमारे जो लिसनर्स हैं उनको देना चाहें।
3: देखें, अगर आपकी इबादत, आप नमाज पढ़ते हैं, अगर आपके वज़ाइफ, आप एक बहुत अच्छे वज़ाइफ पढ़ते हैं, आप बहुत नेक आदमी हैं, मगर अगर आपकी कोनियां इंसानों को चुभ रही हैं, अगर आपके फसाद से कोई एक बंदा भी परेशान है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों के हकूक पूरे नहीं कर रहे। आपकी इबादत, आपकी तमाम चीज़ें तब होगी ज- जब आपके आसपास से छोटे से लेके बड़े लोगों को आप राहत देंगे, आप इंसानों को राहत देना शुरू कर दें, मेरे अल्लाह ताला आप पे इतने नवाजशात करेगा कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
2: बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा सामीन, और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरीम पर। इतना कॉम्प्रिहेंसिवली जाज साहब ने इस सारे साइंस को बड़े ही आमियाना अंदाज में हमारे सामीन के लिए बयान किया कि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। बस इतना कहूँगा कि पॉजिटिव एनर्जी को अपनाएं और पॉजिटिव एनर्जी को फैलाएं, ये मैंने आज के इस नशिस्त में सीखा है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ, किसी और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

www.music.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ke dil mein.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: FM 92.6.
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं आपकी मेज़बान तेज़ीन अली आपको प्रोग्राम नख़्ल अदब में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत पॉजिटिव गुजरा होगा, आपने कुछ नया किया होगा और बहुत पॉजिटिव रहे होंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है या आज हमने जिस पर डिस्कशन करनी है उसका जो मेन टॉपिक है वो है यूथ लिटरेचर और कल्चर पर। आजकल बहुत ही ज़्यादा अंडर डिस्कशन रहते हैं यूथ, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम हो गया, उनके अंदर पेशेंस नहीं है और एक लिटरेचर से दूरी है। आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में असदुल्ला खान को, जो बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं। इसके अलावा मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल के, और इसके अलावा वो रह चुके हैं मेंबर ग्लोबल शेफर्ड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर भी। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप?
4: वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
3: थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और आप आए। मुझे अंदाजा है कि कितनी टफ रूटीन होती है और कितनी मसरूफियत होती है, तो हल्का फुल्का इंट्रो तो मैंने आपका दे दिया। आई वॉन्ट कि आप हमारे सामने इनको बताएं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं।
4: जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला खान खरोटी है, मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ। आई एम इनटू द टैक्सेशन एंड कस्टम्स। इसके अलावा मैं मेंबर हूँ प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल का। उसके अलावा आई एम द मेंबर ऑफ द ग्लोबल शेपर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फर्दर मोर आई एम लुकिंग इन टू माई ओन बिजनेस एंड माई मेन areas that I work on are youth engagement, women education and climate advocacy.
3: Okay. Achha, Asad, this is a very good intro. Aur is age mein, in a young age, ये बहुत ऐसा काम है कि इस एज में सबको होता है कि आप अपना करियर बना लो। तो ये जिन कुछ प्रोग्राम्स के बारे में आपने बताया, ये सारे प्रोग्राम्स एक वॉलंटियर वर्क है। सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर जर्नी कि आपने इसको कैसे स्टार्ट किया और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया फॉर दीज प्रोग्राम्स।
4: So if I talk about my journey, कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, सो बैक इन 2012 जब मेरा एडमिशन हुआ चांदबाग स्कूल में, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पे हमारा एक सोशल स्किल हुआ करता था जिसमें हम नियर बाई विलेजेस जाके फ्री कैंप्स प्रोवाइड करते थे, और उसके अलावा स्कूल्स में हम जाके फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। सो आई वॉज सेलेक्टेड एज द हेड, और जब हम दूसरे स्कूल गए उनको फर्नीचर प्रोवाइड करने में और बुक्स प्रोवाइड करने में फ्री, वहाँ के जो स्टूडेंट्स के फेस पे जो मैंने खुशी देखी है, दैट इज़ समथिंग दैट टच मी डीप। और तब से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि दैट इन माय कैपेसिटी आई विल बी डूइंग व्हाट एवर बेस्ट आई कैन फॉर द पीपल। और हमारे इंसानियत का मकसद भी है कि दूसरे के मदद करना, एक दूसरे के लिए बेहतर से बेहतरीन करना। तो स्टार्टिंग जर्नी तो वहाँ पर थी। उसके अलावा जब मैं लाहौर आया आफ्टर माई ए लेवल्स, सो आई गॉट इन टू द मेम्बरशिप ऑफ द नेशनल यूथ काउंसिल, तो वहाँ पे मैंने सर्व किया यूथ एडवोकेसी में। मेरे प्लांटेशन में काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है। उसके अलावा वुमेन एजुकेशन का मेरा अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा है क्वेटा में, वेयर आई एम प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज्ड फीमेल्स। उसके अलावा जर्नी में काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किया, वर्ल्ड फोरम में काम किया। तो जी बिल्कुल, ये वॉलंटियर वर्क है, बट आई थिंक जो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है किसी की मदद करने में, दैट इज़ समथिंग यू नो दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स।
3: और अगर इसी के साथ आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस, जो मेंबर आप रह चुके हैं एज अ ग्लोबल शेपर्ड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, अगर आप उसको थोड़ा सा बता दें हमारे सामने इनको।
4: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैं मेंबर हूँ, इसका पूरे दुनिया में शेपर्ड्स बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में इनका हब बना होता है, लाहौर हब का मैं मेंबर हूँ, इस तरह क्वेटा हब है, कराची हब है, इस्लामाबाद हब बने हुए इनका। द मेन मकसद इनका ये होता है कि ये लोग इम्पैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं कम्युनिटीज़ में। पूरी दुनिया में इनका चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ये शेपर्स हब। تو یہاں پہ آپ کو ممبر بننے کے لیے سب سے پہلے ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया
1: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, प्रोग्राम नखले अदब। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस चीज को डिस्कशन का टॉपिक बनाया था वो था यूथ, उनके मसाइल, कल्चर और लिटरेचर। हमने डिस्कस किया कि यूथ के मसाइल क्या हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर के जो कुछ यूथ प्रोग्राम्स थे वो क्या थे और उनके 4 E's जिस पर वो काम कर रहे हैं वो क्या थे। जो हमारे साथ बात कर रहे थे असदुल्ला खान, उन्होंने हमें 4 E's के बारे में बताया, वर्किंग एरियाज के बारे में बताया। असद, आपको क्या लगता है, आप भी यूथ हैं, इस वक्त यूथ के मसाइल क्या हैं और वो किस तरह बेहतर हो सकते हैं?
2: जहाँ तक यूथ के मसाइल की बात है, सबसे पहले यूथ में जो है ना बड़े डिविजन आ गई है। वी डू नॉट वेरीफाई थिंग्स। सबसे पहले सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा हमारा रुझान हो गया, जो वहाँ में दिखता है सो विदाउट वेरीफाइंग इट हम उस पर बिलीव कर लेते हैं।
1: मिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा
2: एग्जैक्टली। और उसके अलावा यूथ के लिए नो डाउट देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर हम बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ एंगेजमेंट। उसके अलावा यूथ यू नो एजुकेशन रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट रिलेटेड। इसके अलावा देर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है और ऐसे प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है यूथ के लिए। सबसे पहले तो हमारी जो एक मायूसी का एक आलम चाया हुआ है, यू नो वी नीड टू ओवरकम दैट। और उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमें जो है ना उसके हंट करना चाहिए। यू नो जितना टाइम हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं, अगर उसको हम प्रोडक्टिवली लगाएं अच्छी अपॉर्चुनिटीज सर्च करने में, सो डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप कर सकते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए कोई मेल या फीमेल किसी भी फील्ड में एक अच्छा नाम जो है ना कमा के आए, दे यू नो विन समवेयर अब्रॉड, तो हम में से ही लोग हैं। बात यह कि प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, यू नो वेन यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू हैव अ टैलेंट दैट कैन नेवर बी बीटन, वो कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। और हमारे माइंड में एक जो पर्सपेक्टिव बिल्डअप किया गया कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है या गवर्नमेंट हमारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। वी नीड टू हैव अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंड सेट और ग्रोथ के लिए हमें बड़ा टाइम अवेलेबल होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और जहाँ तक यूथ की बात है, अगेन व्हाट आई पर्सनली बिलीव के सबसे मेजर इशू है वो है यूथ एम्प्लॉयमेंट, कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जो हमारे करिकुलम है और जो हमारी इंडस्ट्री में उसकी रिक्वायरमेंट है स्किल सेट की, दैट इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट मिसमैच। तो वो ब्रिज गैप करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो यूथ है वो अगर बैचलर्स डिग्री भी करे, जिस प्रोग्राम भी किया, फॉर एग्जांपल यू कैन बी फ्रॉम मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और फ्रॉम BBA डिपार्टमेंट, तो आपके जो रेलिवेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे आपको जो है ना ईजिली अगर आप जॉब करना चाह रहे हो तो जॉब होनी चाहिए। और मैं जो समझता हूँ, अगर एजुकेशन से रिलेट करूँ, मेजर इशू जो मुझे लगता है कि हम जो है ना एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है ना प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अगर हम जो है ना यूथ को और अपने स्टूडेंट्स को इस एज में अपना बिजनेस की तरफ रुझान नहीं बढ़ाएंगे या उसकी तरफ एजुकेशन नहीं करेंगे, तो देयर इज़ नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कि वो एक बार बैचलर्स पूरी कंप्लीट करे और फिर जब मार्केट में उसको पता लगे कि मुझे तो जॉब भी नहीं मिल रही, अब मैं क्या करूँ, वो जो एक सिचुएशन थी वो होपलेसनेस की आ जाती है। तो मेरे ख्याल से करिकुलम करियर फोकस्ड होना चाहिए, उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज है उसको जो है ना बड़ा आम होना चाहिए, बी इट अस लॉ स्टूडेंट, मैथ्स कम्युनिकेशन कोई भी हो उसको पढ़ाने चाहिए, ताकि बिजनेस को उसको पता हो, बिजनेस को हमें प्रमोट करना चाहिए। दैट इज समथिंग आई वुड ऐड।
1: अच्छा, आपने अपने बिल्कुल इंट्रो में बताया था कि करेंटली यू आर वर्किंग ऑन वीमेन एजुकेशन, तो उसका मेन पर्पस क्या है, वो आपने कहाँ स्टार्ट किया है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं?
2: That is my own initiative because as I mentioned earlier, I'm from Quetta, Balochistan, जहाँ पे unfortunately women education का अभी तक सच इतना रुझान नहीं है, but I see hope कि अभी बेहतर हो रहा है। और वहाँ पे काफ़ी underprivileged लोग हैं जिनको एजुकेशन की एसेस नहीं है। एक तो कल्चर बैरियर भी बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा पीपल हु डू नॉट अफोर्ड, सो एजुकेशन इज़ यू नो सो सेकेंडरी, के जिसके पास रात को खाने के लिए कुछ नहीं है और उसको अपना घर चलाना मुश्किल है, सो एजुकेशन माने नहीं रखती उनके लिए फिर। सो उनके लिए मैंने इनिशिएटिव ये उठाया कि अपने घर में आई एम यू नो एजुकेटिंग राउंड अबाउट 250 फीमेल्स राइट नाउ। ये शुरू हुआ था 12 फीमेल से और अब इट्स अराउंड 250। हम अपने घर में उनको जो है ना पढ़ाते हैं, फीमेल्स ही पढ़ाती हैं उनको, और उसके स्किल्स भी काम करते हैं, सच एज कुकिंग स्किल्स, एम्ब्रॉयडरी स्किल्स, ताकि वो जो है ना सिर्फ पढ़ाई करे बल्कि उसके साथ अपने स्किल्स इंप्रूव करे और वो इंडिपेंडेंट वुमेन भी बन सकते हैं। اور اس کے علاوہ ہم ان کے ایتھکس جو ہے نا کلاسز وغیرہ بھی رکھتے ہیں. سو ایک یہ ایسا انیشیٹو ہے جس میں وٹ آئی کین کلیئرلی اینڈ کانفیڈینٹلی سے کہ بڑا کرسٹل کلیئر ڈفرینس آیا ہماری پوری کمیونٹی میں, کیونکہ جو چھوٹی بچیاں پڑھتی ہے اور ان کو جس طریقے سے ایتھکس پہ اسپیشلی فوکسڈ ان کو بتایا جاتا ہے بیک ہوم, اور وہ جب جا کے گھر میں جس طریقے سے رہنا شروع ہو گئی ہے, یو نو دا پیرنٹس آر کمپلیٹلی سیٹسفائڈ اینڈ دے آر امیزڈ آئی ووڈ سے کہ کمپلیٹ ایک چینج نظر آ رہا ہے. اور اس ایک انیشیٹو سے اب کافی زیادہ جو ہے نا لوگ ملیں گے, یس سر ایجوکیشن از ویری امپورٹینٹ اسپیشلی فار فیمیلز, تو ایجوکیشن کی طرف ان کا ایک رجحان بڑھا ہے. دیٹ از سم تھنگ اٹ از گوئنگ بیک فرام 2012, اب بھی اٹ از ان اے کنٹینیوس پروسیس, اور آئی ایم انٹینڈیڈ کہ کچھ ٹائم بعد اس کو مین اسٹریم کر کے بہتر طریقے سے کروں.
1: اچھا, اس میں کوئی ایج لمٹ ہے یا پھر یہ سب کے لیے؟
2: ایز سچ اس میں تو ایج لمٹ نہیں رکھی ہوئی, بٹ موسٹلی جو آتے ہیں وہ انڈر پریولیجڈ ہوتے ہیں, اور چھوٹی بچی ہی آتی ہے فرام دا ایج آف آئی ووڈ سے فار دا ایج آف 4 ٹل 10 زیادہ تر یہ ہوتے ہیں.
1: تھینک یو سو مچ اسد, آپ نے وقت نکالا اور آپ نے ان سب موضوعوں پر بات کی جو شاید ہماری یوتھ سننا بھی چاہ رہی تھی, اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ مین پرپز کیا تھا یوتھ پروگرام کا اور نیشنل یوتھ کاؤنسل, اور جہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں بیسٹ وشیز فار یور فیوچر, اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہی تھا آج کا ہمارا شو, امید ہے آپ کو شو پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں انسٹاگرام پیج پہ FM 92.6 یو سی پی ریڈیو پر, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا. خدا حافظ.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

मौसीकी के सुरोरताल सुरोरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.ek FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6।
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 UCP की दुनिया से। लिसनर्स, आपने इस साल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बहुत से बज़वर्ड सुने होंगे, जैसे कि मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, HAI फॉर IoT, 5G एंड बियॉन्ड, क्लाइमेट टेक चैलेंजेस, मोर ऑफ क्लाउड, और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने 2025 को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का साल भी करार दिया है। अब इन सब टेक्नोलॉजीज़ को आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए, तो इसका हल है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये टेक्नोलॉजी कब और किस तरह स्टार्ट हुई, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस करने के लिए ये किस तरह से हमारी हेल्प करती है, तो इस सब पे बात करने के लिए आज हमारी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, मिस मारुख बतूल, जिन्होंने अपना करियर टेलीकॉम इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था और टेलीकॉम के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक्सपीरियंस करने के बाद उन्होंने स्विच किया यूनिवर्सिटी लेक्चरर के तौर पे। तो आइए हम इस टॉपिक पे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस।
4: वालेकुम अस्सलाम,
3: कैसी हैं आप?
4: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो टर्म हम बार बार यूज़ कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, कि क्या है, इसके बारे में ज़रा हमारे सुनने वालों को आगाह कीजिए।
4: क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर बहुत आसान अल्फाज में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिस पे हम काम करते हुए कोई पावरफुल रिसोर्स, कोई स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कहीं और एक्सेस करते हुए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं कि आपके पास जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद हैं या जितना भी आपके पास इस वक्त सिस्टम्स मौजूद हैं, उन सब की पावर या उनकी स्टोरेज इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। जब ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसको इन्हांस करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो इंक्रीज़ करने के लिए समटाइम्स बजट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसको आप कभी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहूँ कि स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता, उनके लिए ईजी नहीं होता कि इतने एक्सपेंसिव सोल्यूशंस की तरफ जाएँ, तो उसका एक बेसिक सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है कि उन्होंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करना है या उन्होंने कहीं पर अपने किसी डेटा सेट्स को स्टोर करना है, तो उसकी स्टोरेज के लिए वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाते हैं। और इसमें पावरफुल टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं जो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं और जिनकी प्रोसेसिंग की मदद जो आपको आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, जिसके ऊपर आप प्रोसेसिंग अपने डेटा सेट पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं।
3: अच्छा, आप अभी पावरफुल कंप्यूटिंग की बात कर रही हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में पावरफुल कंप्यूटर की जब बात की जाती है तो इसमें मैक्सिमम कितने पावरफुल कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, और स्टोरेज की भी कोई लिमिट होती है या बगैर किसी लिमिट के आप जितना मर्जी जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं?
4: अच्छा, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कुछ इस तरह से करूँगी कि पावरफुल कंप्यूटिंग अगर आप एग्ज़ाम्पल लो तो ये चीज़ आपके पास सिंपली है कि हम अपने कंप्यूटर्स की पावर को असेस करते हैं द बुलियन और द लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन अ सेकंड। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक सेकंड के अंदर आप कितने ऑपरेशंस अपने प्रोसेसर पर प्रोसेस कर सकते हैं। तो मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस हैं, बुलियन ऑपरेशंस हैं, मिलियंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो आप अपने किसी एक प्रोसेसर पर ऑपरेट कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ان پروسیسنگ کی آپ اگزامپل لیتے ہو تو آپ کے پاس ملینز اور بلینز آف ایگزیکیوشنز سیم ٹائم پر آپ کو مل رہی ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ اگر آپ کی ڈیمانڈ میں یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ گرافک کمپیوٹنگ کی بات کرتے ہو, گرافیکل پروسیسنگ یونٹ کی بات کرتے ہو, آپ نیورل پروسیسنگ یونٹس کی بات کرتے ہو, آپ کوانٹم پروسیسنگ یونٹ کی بات کر سکتے ہو, اینڈ دے آر ویری ایکسپینسو. بہت ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے یا اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائز کے لیے ان کو ایکسیس کرنا یا ان کو استعمال کرنا ایزی نہیں رہ جاتا. تو ان سب چیزوں کا سلیوشن آپ کے پاس کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں ملے گا کہ آپ نے بلینز آف انسٹرکشنز جو ہیں اگر پروسیس کرنی ہے اور اس میں آپ کے پاس بہت بڑا ڈیٹا سیٹ ہے, لیٹ سپوز کہ آپ کے پاس جینیٹک کے الگردم ہے, اے آئی کے الگردم ہے, جنریٹو اے آئی کے الگردمز ہیں, یا آپ کے پاس مشین لرننگ کے الگردمز ہیں, یہ سارے کے سارے الگردم آپ نے رن کرنے ہیں اور آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ بہت ہیوج ڈیٹا سیٹ ہے, بہت بڑا ڈیٹا سیٹ ہے, تو اس کو رن کرنے کے لیے آپ کے پاس پاورفل کمپیوٹنگ اویلیبل ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ. جیسے اگزامپل لے سکتے ہیں ولو کی. ولو آپ کے پاس ایک پروسیسر یونٹ ہے جو گوگل نے انٹروڈیوس کروایا ہے اور وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے یا آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ 10 سیپٹیلین ایئرز میں اپنی کمپیوٹنگ پروسیس کو 5 منٹس, جو عام کمپیوٹر 10 سیپٹیلین ایئر میں کمپلیٹ کرے گا, ولو اس کو 5 منٹ میں کمپلیٹ کر سکتا ہے. تو پاورفل کمپیوٹنگ از سم تھنگ کہ جتنی زیادہ انسٹرکشنز آپ کا ایک پروسیسر سے ایک سیکنڈ میں فلفل کر رہا ہے یا ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, اتنا کمپیوٹر آپ کا پاورفل کنسیڈر کیا جائے گا. اب رہی بات اسٹوریج کی, تو اسٹوریج کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جا رہا ہے. ہم جن الگوریدمس کے اوپر اب سے 5 سے 10 سال پہلے کام کر رہے تھے, ان الگوریدمس نے بہت زیادہ چیزیں لرن کر لی ہیں اور اس کی لرننگ کے ساتھ آپ کے پاس بہت ساری انسٹرکشنز بھی اٹیچ ہیں. جب یہ سب ڈیٹا آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو اسٹوریج بھی بہت پاورفل ریکوائرڈ ہوگی. تو ڈفرینٹ لیول پر آپ کو اسٹوریج بھی اویلیبل ہے ڈفرینٹ کلاؤڈ پلیٹفارمس پہ.
5: بالکل ٹھیک. جی لسنرس, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا, ملتے ہیں آپ سے آفٹر بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: Broadcasting from the City Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक जी. मिस, आप जरा हमें बताइएगा कि किस तरह की सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग पे अवेलेबल हैं.
2: अच्छा, सर्विसेज की एग्जांपल आप पकड़ लें या सर्विसेज की बात करें तो आपके पास मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसमें आप कंप्यूटेशन पावर से लेके स्टोरेज से लेके नेटवर्किंग की कुछ फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के नाम से जानी जाती है, जिसमें आप कोर इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं और उसके बाद उस पर अपनी मर्जी के टास्क परफॉर्म करते हैं, अपनी मर्जी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं. तो पहली बेसिक सर्विस आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ रहा है. आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, आपको अपने सारे सॉफ्टवेयर्स या आपको अपना प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करने के लिए जिस भी तरह की एनवायरनमेंट चाहिए उसको डिज़ाइन करने के लिए कुछ एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी. तो क्लाउड एक सोल्यूशन इन सब एफर्ट्स को अवॉइड करने के लिए प्रोवाइड करता है. वहाँ पर आप देखते हो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की ऑप्शन.
1: जी,
2: प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपको क्या दे रहा है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपको दे रहा है कंप्लीट रेडी टू यूज एनवायरमेंट, जिसमें आप अपनी कंप्लीट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होंगे. फायदा इसका ये है कि आप जितनी भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे वो हॉस्पिटल्स से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, उन सब का एक रेडीली अवेलेबल एनवायरमेंट आपको मिल जाएगा.
1: कंप्लीट फ्रीडम है, कंप्लीट फ्रीडम है, जिस तरह के अकॉर्डिंग को एडजस्ट कर सकते हैं.
2: एग्जैक्टली. अब तीसरे लेवल पर अगर आप सर्विस की एग्जाम्पल लेते हैं तो फिर आप इन सब चीज़ों से भी आज़ाद हो सकते हैं और आज़ाद हो के यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स. और ये सॉफ्टवेयर्स आपके पास जब सर्विसेज देंगे तो दे आर नोन एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो बेसिकली तीन तरह की सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको बने बनाए सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे. जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मल्टीपल मैप्स आपके पास हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो आपको हेल्पफुल होते हैं फॉर योर वर्किंग एंड फंक्शनैलिटी. डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सूटेबल हो सकते हैं.
1: अच्छा, आप जिस तरह बात कर रही हैं कि यहाँ पे हम अपना डेटा भी स्टोर करवा सकते हैं, तो कोई किसी तरह की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, या बस ऐसे ही हम लोग रख लेते हैं और बस उसके बाद डर ही रहता है कि कोई सिक्योरिटी है या हमारा कभी भी डेटा लीक हो सकता है, तो इस तरह का कोई सिलसिला है?
2: जी आमना, बिल्कुल. ये एक बहुत कंसर्निंग और वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है, और इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है कि सिक्योरिटी के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं. सबसे पहले लेवल पे फिजिकल सिक्योरिटी आती है. फिजिकल सिक्योरिटी में आप ये देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स आपको फैसिलिटेट करते हैं, या आप उनको चेक कर सकते हैं, उनके एनवायरनमेंट को वैलिडेट कर सकते हैं. फिजिकल सिक्योरिटी सबसे आप पहले इंपॉर्टेंटली आपको मिलेगी. फिजिकल सिक्योरिटी से मुराद ये कि डेटा सेंटर्स हर तरह से सिक्योर बनाए जाएंगे, हर किसी की एंट्री वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी. अगर वहाँ पे एंटर भी होना है तो आपके पास सिक्योरिटी पासेस या आपके पास ऑथेंटिक ऑथेंटिकेशन मौजूद होगी, या तो आप एम्प्लॉई हैं और अगर आप विजिट करने के लिए जा रहे हैं उन डेटा सेंटर को, तो आपके पास ऑथेंटिक एक्सेस वहाँ की अवेलेबल होनी चाहिए. उसके अलावा आप बात करेंगे कि आपने डेटा वहाँ पे स्टोर कर दिया, तो डेटा की सिक्योरिटी दो तरह से आपकी देखी जा सकती है. डेटा जिस वक्त रेस्ट पे मौजूद है, उस डेटा के ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं

0: रही, वो डाटा सिर्फ हार्ड ड्राइव पे या किसी भी मीडियम के ऊपर स्टोर है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट इंक्रिप्शन की टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि डाटा अगर मूव कर रहा है, लेट सपोज आपने डाटा अपलोड किया है, अब आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो, तो जब डाउनलोड करोगे तो जो ट्रांजिट के टाइम पे या जो मूवमेंट के दौरान में आपका डाटा मूव कर रहा है, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट कीज और डिफरेंट एल्गोरिथम्स रन करते हैं जिससे आपके डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इस सिक्योरिटी के कंसर्न को आप बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की अपनी वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और व्हाट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी दे आर प्रोवाइडिंग फॉर देयर डाटा प्रोटेक्शन।
1: यानी हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो हाईली सिक्योर है।
0: जी बिल्कुल, डेटा आपका सिक्योर है।
1: अच्छा, स्टार्टअप या बिजनेस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह फ़ायदा दे सकती है?
0: देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। स्टार्टअप और बिजनेस के लिए नॉर्मली आपको करना क्या होगा, अगर आप टेक स्टार्टअप हैं या आप टेक से रिलेटेड कोई सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, वैसे तो आज के टाइम पे जितने भी बिजनेसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो जब आप इस स्टार्टअप की बात करते हैं, इस टेक सिस्टम की बात करेंगे, तो इसमें होगा क्या कि आपको एक पर्टिकुलर बजट रखना पड़ता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हार्डवेयर को ख़रीदने के लिए। इनिशियली आपके पास शायद उतना कैपिटल मौजूद ना हो। जब आपके पास कैपिटल मौजूद नहीं है या आपके पास बजट बहुत लो है या कैपिटल बहुत कम है, तो उसमें बजाय इसके कि आप हार्डवेयर को ख़रीदें या आप अपने कंप्यूटर्स को परचेज़ करें या आप अपनी स्टोरेज डिवाइसेस को परचेज़ करें, आप अपना एक लॉगिन और अकाउंट बहुत नॉमिनल से चार्जेस में किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर बनाएं और अपने टास्क वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके पास स्टार्टअप और बिजनेस के लिए नहीं, बच्चों ने अगर रिसर्च करनी है और उन्होंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए कोई हार्डवेयर रिक्वायर्ड है तो ये उससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
1: अच्छा, आप ये बताइएगा मिस मारो कि इकोनॉमी को भी क्लाउड कंप्यूटिंग मुतासर कर रही है किसी तरह?
0: जी बिल्कुल, इकोनॉमी को भी मुतासर कर रही है। अब हम एग्जांपल अपने पिछले क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि अगर एक स्टार्टअप आपने बनाया या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस बिज़नेस के लिए आपको जो बजट रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा हार्डवेयर ख़रीदने के लिए, बजाय इसके कि आप अपने हार्डवेयर को या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़रीदें और उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिसोर्सेज को हायर करें और उन रिसोर्सेज को भी आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली पेमेंट कर रहे होंगे, आप फोकस हो जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर या अपने काम की तरफ या अपने बिजनेस की तरफ। आपको एक्स्ट्रा बर्डन लेके अपने बैगेज को लेके नहीं चलना किसी भी बिजनेस के लिए। तो इकोनॉमी बूस्ट आपको किस तरह मिल रहा है, जो आपने जो आपका बिजनेस है आपकी कोर सर्विसेज उस बिजनेस के ऊपर फोकस हो जाएंगी, तो इस तरह इकोनॉमी को ये थोड़ा इफेक्ट कर रहा होता है।
1: क्लाउड कंप्यूटिंग में आपने बताया कि पावरफुल कंप्यूटर्स 24/7 रन हो रहे हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट पे इसके क्या असरात पाए जाते हैं?
0: एनवायरनमेंट पे असरा तक अगर आप इसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली या फैक्ट्स की फॉर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 8 बिलियन के करीब है, थोड़ा सा एक्सीड कर चुकी है। अब 8 बिलियन में से तकरीबन 5.56 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि हर एक रिसोर्स जो इस वक्त इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है वो एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर को रन करे और पावरफुल कंप्यूटर पे अपने सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उसको परफॉर्म करने के बाद आप देखें कि कितनी हीट और कितनी कार्बन एमिशन होगी। अगर 5.6 बिलियन लोगों के पास मशीन है और उस कंप्यूटर्स हैं, उसके मुकाबले में हम ये कह सकते हैं कि हम शेयर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, जहाँ पे पावरफुल कंप्यूटर्स मौजूद तो ज़रूर हैं लेकिन उसमें शेयरिंग पॉसिबल होगी। क्यों? क्योंकि अगर 5 बिलियन आबादी दुनिया की अपने पास ज़ाती कंप्यूटर रखती है और उन कंप्यूटर्स को प्रोसेस करती है, तो 24/7 उन्होंने तो नहीं काम करना, लेकिन आप 24/7 क्लाउड कंप्यूटिंग के कंप्यूटर्स को रन करके शेयरिंग मॉडल दे सकते हैं और उस शेयरिंग की वजह से आपके पास कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट बहुत हद तक कम हो जाता है।
1: यानी हमारे एनवायरनमेंट को इससे कोई ख़तरा नहीं है?
0: जी
1: हम कह सकते हैं,
0: हम कह सकते हैं। प्लस माइनस प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ के अवेलेबल होते हैं। हम बिल्कुल एनवायरनमेंट को, फिर एक चीज़ आपके पास ये भी आ जाती है, शायद उतने मेजर्स या उतने मेजरमेंट्स आप ना लें, प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लें जो ज़ाती तौर पे कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए ले जा सकते हैं। जब प्लेटफॉर्म आपके पास पड़ा है तो सॉल्यूशंस भी कार्बन एमिशन या कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं।
1: बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स जो से हैं वो अवेलेबल हैं क्लाउड के लिए. अगर आपने कोई सेलेक्ट करना हो तो किस बेस पे या वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम इससे सर्विसेज अवेल करते हैं?
0: अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि कॉस्ट की एग्जांपल ली जा सकती है. कुछ सर्विसेज आपको बहुत एक्सपेंसिव भी मिल सकती हैं, कुछ सर्विसेज लेकिन उतनी एक्सपेंसिव नहीं होंगी कि आपको हार्डवेयर खरीदने जितने खर्चे उसमें देने पड़े. कंपैरेटिवली एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक वो सर्विसेज आपके पास हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि वो चीप मिल जाए. तो सबसे बेसिक फैक्टर आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करने के लिए वो कॉस्ट है. फिर दूसरे पॉइंट पे आए तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके डेटा सेंटर की लोकेशन क्या है. डेफिनेटली अगर आप किसी फार फ्लंग डेटा सेंटर से डेटा को इम्पोर्ट कर रहे होंगे या डेटा को अपलोड कर रहे होंगे तो आपको चांसेस हैं कि कुछ पेमेंट्स एक्स्ट्रा करनी पड़े. तो कोशिश करें कि जो आपके नियरेस्ट अवेलेबल डेटा सेंटर्स हैं उसमें आप अपने डेटा को या अपनी प्रोसेसिंग को रख सकते हैं. इसके अलावा डिपेंड करता है कि कुछ सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, कुछ सर्विसेज दूसरा प्लेटफॉर्म दे रहा है, कुछ सर्विसेज तीसरा प्लेटफॉर्म दे रहा है. तो सर्विस टू सर्विस भी वेरी कर रही होती हैं चीज़ें. और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिप्यूट एंड सपोर्ट कि वो आपको किस तरह से सर्विसेज देने के बाद या आपके सर्विसेज खरीदने के बाद आपको कितनी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो ये फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं.
1: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का. सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे और हमारे साथ हमारी ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं मिस मारुख बतूल और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मिस से पूछते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब मार्केट क्या है।
2: सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मैं बताऊँ कि हमारे पास जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा इन्हांस है। अगर आप इन्हांसमेंट की बात करें या जॉब मार्केट की बात करें तो हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस को क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ काम करना है या फिर क्लाउड का कोई सेटअप डिज़ाइन करना है तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जॉब मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो इस तरह के आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स की फैसिलिटेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल अकाउंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको या सर्विस प्रोवाइडर्स आपको एक साल तक के लिए फ्री अकाउंट प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने टास्क या अपनी रिसर्च से रिलेटेड काम या फिर अपनी कोई स्टार्टअप पे अगर काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं।
1: हमारे सुनने वालों को आप क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में भी थोड़ा बता दें कि कौन कौन से अवेलेबल हैं और हमारे स्टूडेंट इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं।
2: जी, क्लाउड की अगर आप एग्जांपल लें तो सबसे ज़्यादा रेनोन्ड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स आपके पास जो अवेलेबल हैं करेंटली वो गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, IBM क्लाउड है, Oracle के कुछ क्लाउड के सेटअप अवेलेबल हैं, अलीबाबा क्लाउड अवेलेबल है, रेड हैट है, डिजिटल ओशन के नाम से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं, लेनोड के और रैकस्पेस के नाम से अवेलेबल हैं। अगर आप गूगल करें या सर्च करें तो हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे जिनके नाम मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। दे आर एक्चुअली वर्ल्ड लीडर्स जिनको आप कह सकते हैं, जिनकी सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस का भी आंसर दिया है कि हमारे पास जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, स्पेशली अगर आप एग्जांपल लेते हैं गूगल की, एज्योर की या अमेज़ॉन की, इनके पास स्पेशल अकाउंट्स क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स उन अकाउंट्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस पे काम कर सकते हैं, अपने स्टार्टअप से काम कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स उसके ऊपर बना सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि क्लाउड की सर्विसेज यूटिलाइज़ की जा सकती हैं।
1: बहुत मज़ा आ रहा था क्लाउड के बारे में जान के, लेकिन आपको पता है कि चूंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, लिसनर्स आज के प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही हम अपनी ऑनरेबल गेस्ट मिस मारुख का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मिस आपके कीमती वक्त देने का, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके।
2: बहुत शुक्रिया आपका भी, मुझे यहाँ पे आके आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा है। स्पेशली जो क्वेश्चंस आप लोगों के स्टूडेंट्स के कंसर्न से रिलेटेड हैं, आई होप कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे।
1: जी इंशाल्लाह। जी लिसनर्स, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम पे इसी प्रोग्राम में। सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

www.musicfeed.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
2: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। UCP की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.